0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने इस समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। परेड में नौसेना और थल सेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया। इसमें भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था, जो भारत और सेशल्स के करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के तहत युद्ध पोत INS तरकश और सर्वेक्षण पोत INS इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया, जो सेशल्स के साथ भारत की पुरानी दोस्ती को उजागर करता है। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को हार्दिक बधाई दी। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के निमंत्रण पर शनिवार को सेशल्स पहुंचे। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है, जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के देशों के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। श्री मोदी की यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि करेगी। इससे पहले विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है।
1: मेरी सेशल्स की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहाँ समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहाँ हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहाँ हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले।
0: प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की भी समीक्षा की। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधि मंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इनक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चे के जीवन, विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआती 3 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। 2 फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है। गुजरात में 4था वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित GSFC विश्वविद्यालय में शुरू होगा। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लंदन में FIH प्रो लीग के रिवर्स मैच में इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हरा दिया। निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। ICC महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मध्यम लहरी 512.5

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानीय अतिथि के रूप में सेशल्स के राष्ट्रपति दिवस समारोह में शामिल हुए। मॉरिशस के प्रधानमंत्री

डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ भी चर्चा की। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रक्षा अलंकरण समारोह में आज राष्ट्रपति भवन में वीरता पदक प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर FIH प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल हुए। श्री मोदी ने समारोह में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री

0: लिया और ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परेड में नौसेना और थलसेना की भारतीय मार्चिंग टुकड़ी ने हिस्सा लिया।
1: परेड में भारतीय नौसेना का बैंड भी शामिल था। ये भारत और सेशल्स की करीबी और विशेष साझेदारी को दर्शाता है। विशेष पहल के अंतर्गत युद्धपोत आईएनएस तरकश और सर्वेक्षण पोत आईएनएस इक्षक को पोर्ट विक्टोरिया में तैनात किया गया था। प्रधानमंत्री ने इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत की ओर से सेशल्स के लोगों को शुभकामनाएं दी। श्री मोदी राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी के निमंत्रण पर सेशल्स की 3 दिन की यात्रा पर हैं। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से साझेदारी है जो साझा ऐतिहासिक सांस्कृतिक और लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी होने के नाते सेशल्स भारत के महासागर विजन और ग्लोबल साउथ के लिए प्रतिबद्धता में विशेष स्थान रखता है। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच करीबी और स्थायी दोस्ती को और मजबूत करेगी तथा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि भी करेगी। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत से मिले विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत मॉरिशस के विकास और तरक्की को महत्व देता है। उन्होंने कहा कि मॉरिशस को स्वास्थ्य, संपर्क, सतत विकास और समुद्री संसाधनों के प्रबंधन में योगदान देना जारी रहेगा। दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत के विजन महासागर और पड़ोसी देशों को प्राथमिकता देने की नीति के तहत भारत मॉरिशस मजबूत रणनीतिक साझेदारी के महत्व और ग्लोबल साउथ के लिए साझा प्रतिबद्धता पर सहमति प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया।
2: सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हार्मिनी से मिले इस सम्मान से टिकाऊ विकास के लिए प्रधानमंत्री मोदी के लंबे समय से जारी प्रयास और उनके ग्रीन विजन को मान्यता मिली है। यह सम्मान टिकाऊ विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री को मिले ऐसे ही कई सम्मानों की कड़ी में एक और उपलब्धि है। इनमें खाद्य और कृषि संगठन का एग्रीकोला मेडल, सियोल शांति पुरस्कार और संयुक्त राष्ट्र का चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार शामिल है। इस सम्मान से पता चलता है कि सेशल्स हिंद महासागर क्षेत्र में क्षमता निर्माण, पर्यावरण संबंधी कार्यों, टिकाऊ विकास के प्रयासों और साझा प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाने में भारत की बढ़ती भूमिका को भरोसेमंद साझेदार के तौर पर अत्यधिक महत्व देता है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कल कतर की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य रणनीतिक होर्मोज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
3: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से अमीशा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ब्रिटेन यात्रा पूरी करने के बाद व्यापार, निवेश और रणनीतिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए ग्रीस की राजधानी एथेंस में उच्च स्तरीय भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं। ये प्रतिनिधिमंडल द एथेंस स्टार्टअप बिजनेस इंक्यूबेटर में प्रस्तुति और स्टार्टअप गतिविधियों में भाग लेगा। इस दौरान एथेंस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में भारतीय और ग्रीक उद्योग जगत के नेताओं के साथ बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रक्षा, खाद्य और कृषि जैसे विषयों पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पदक प्रदान करेंगे। इस अवसर पर राष्ट्रपति सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता अलंकरण प्रदान करेंगे। ये अलंकरण असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं। इससे पहले राष्ट्रपति ने 8 जून को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पदक प्रदान किए थे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन के दौरान समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम आरंभ करेंगे। ये कार्यक्रम पहले 3 साल संपूर्ण देखभाल की पहल को आगे बढ़ाएगा, क्योंकि बच्चों के जीवन विकास, पोषण और मस्तिष्क के प्रारंभिक विकास के लिए शुरुआत

0: तीन वर्ष बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। ये कार्यक्रम जन्म से लेकर तीन वर्ष तक के बच्चों के लिए घर और समुदाय में ही स्वास्थ्य सेवाएं देगा। गुजरात में चौथा वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन आज से वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में शुरू हो रहा है। इस सम्मेलन का उद्देश्य गुजरात के मध्य क्षेत्र में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सम्मेलन में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, मनोहर लाल खट्टर और मनसुख मांडविया तथा राज्य सरकार की कई मंत्री और विभिन्न देशों के राजनयिक हिस्सा लेंगे।
1: 150 से अधिक विशेषज्ञ और जापान, सिंगापुर, यूएई, यूक्रेन और रवांडा जैसे भागीदार देशों के प्रतिनिधि मध्य गुजरात के आर्थिक विकास पर मंथन करेंगे। इसके साथ ही सम्मेलन में आयोजित भव्य प्रदर्शनी के 150 से अधिक स्टॉल, स्थानीय एमएसएमई, उन्नत तकनीकी स्टार्टअप और अमूल एवं जीएफएससी जैसे बड़े उद्यमों की क्षमता और नवाचार को प्रदर्शित करेंगे। अपर्णा खूट, आकाशवाणी समाचार, वडोदरा।
0: महाराष्ट्र में भिवंडी सत्र न्यायालय ने रविवार को महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपर लीक मामले में गिरफ्तार तीन आरोपियों को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अंतर्राज्यीय परीक्षा रैकेट शामिल दो फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।
2: जांच अधिकारियों ने लीक हुए प्रश्न पत्र के स्रोत का पता लगाने, वित्तीय लेन देन की जांच करने, महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों में बेचे जाने की छानबीन कराने तथा इस रैकेट में शामिल अन्य लोगों की पहचान कराने के लिए 10 दिन की पुलिस हिरासत की मांग की थी। टीईटी परीक्षा जो रविवार 28 जून को आयोजित होने वाली थी, भिवंडी पुलिस द्वारा परीक्षा से एक दिन पहले पेपर लीक का भंडाफोड़ किए जाने के बाद स्थगित कर दी गई। शैलजा तिवले, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: दिल्ली की भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी ने दवाओं, सर्जिकल सामान और मेडिकल उपकरणों की खरीद में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियों के आरोप के मामलों में तत्कालीन स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशक डॉक्टर वत्सला अग्रवाल और केंद्रीय खरीद एजेंसी के उपलेखा नियंत्रक नीरज चोपड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। उड़ीसा की पूरी तीर्थ नगरी में आज सवेरे श्री जगन्नाथ मंदिर में देव स्नान यात्रा के अवसर पर लाखों श्रद्धालु जुटे हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा का पवित्र स्नान उत्सव है।
3: सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भाई बहन देवताओं को गर्भगृह से औपचारिक रूप से स्नान वेदी तक ले जाया गया। वहां वैदिक मंत्रों के उच्चारण, शंख की ध्वनि और भक्ति संगीत के बीच पवित्र जल के 108 घड़ों से उनका स्नान कराया जाएगा। देव स्नान पूर्णिमा के शुभ अवसर पर मनाया जाने वाला यह त्योहार वार्षिक रथ यात्रा से पहले देवताओं के सार्वजनिक दर्शन का मौका होता है। उत्सव को सुचारू और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: असम के धेमाजी जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इसकी वजह अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बढ़े भूस्खलन से गाई नदी का ऊपरी प्रवाह अस्थायी रूप से रुक जाना बताया जा रहा है।
4: धेमाजी जिला प्रशासन ने तत्काल जन सुरक्षा परामर्श जारी करते हुए चेतावनी दी है कि यदि अवरुद्ध जल अचानक नीचे की ओर प्रवाहित होता है तो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। नदी तटों, नालों, अर्द्रभूमियों, तटबंधों तथा अन्य निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से विशेष सतर्कता बरतने की अपील की गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों से सरकारी निर्देशों और आधिकारिक सूचनाओं पर लगातार नजर रखने, स्थानीय प्रशासन के साथ सहयोग करने तथा आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच पहाड़ी क्षेत्रों से आए तेज बहाव के पानी ने जिले के जोनाइको डिस्ट्रिक्ट के कई हिस्सों को जलमग्न कर दिया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: मौसम विभाग ने आज पश्चिम बंगाल के पर्वतीय क्षेत्र और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो से तीन दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं दिल्ली, बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में कल तक लू की स्थिति बनी रहेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञों से विशेष संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112371 07 0112371 07 0112371 06 और 0112331 4444। खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को

0: पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न कर लिया है। लंदन में निर्धारित समय तक दोनों टीम कोई गोल नहीं कर सकी थी। आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप ए के अपने आखिरी मैच में भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। उधर आयरलैंड ने दूसरे और अंतिम 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को 1 रन से हरा दिया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा से जुड़ा समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। अमर उजाला ने प्रधानमंत्री मोदी के शब्द दिए हैं, हिंद महासागर को अवसरों का महासागर बनाना लक्ष्य। जनसत्ता लिखता है, प्रधानमंत्री ने सेशल्स में कहा, समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में छापेमारी का समाचार भी कई समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, आरोपियों के ठिकानों से संपत्ति के दस्तावेज जब्त। दैनिक जागरण के शब्द हैं, 6 आरोपियों के साथ ठिकानों पर छापेमारी। आरोपी राम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के घर से आभूषण और नकदी बरामद। राजधानी दिल्ली में दोपहर में 51 डिग्री वाली तपिश, जून में पहली बार लू। कल और परसों आंधी बारिश का येलो अलर्ट। 2 जुलाई से गर्मी से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद, नव भारत टाइम्स की खबर है। देशबंधु ने बढ़ते तापमान और कम बर्फबारी का समाचार प्रकाशित किया है। गर्मी की मार से तेजी से पिघल रहा हिमलिंग, अमरनाथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं और प्रशासन की बढ़ी चिंता। हिंदुस्तान ने मानसून में देरी पर अपना संपादकीय प्रकाशित किया है, समस्या बढ़ाएगा कमजोर मानसून। पत्र लिखता है, भारत में चावल का पर्याप्त सरकारी भंडार है और वो मुख्य खरीफ फसल में कमी को पूरा कर सकता है, अलबत्ता दलहन और तिलहन पर अल नीनो का असर पड़ेगा। लोकसत्य ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से मची तबाही के समाचार सचित्र दिए हैं। पत्र लिखता है, 1,500 से अधिक विदेशी बचाव कर्मी पहुंचे, चारों ओर नजर आ रहा तबाही का मंजर। ईरान का ऐलान, अगले 30 दिन होर्मुज पर हमारा कब्जा, बहरीन कुवैत पर फिर हमला। राष्ट्रपति ट्रंप ने चेताया, ईरान नहीं सुधरा तो वजूद मिटा देंगे, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। राजस्थान पत्रिका ने अनोखा फॉर्मूला शीर्षक से नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज के विशेषज्ञों की अपील से जुड़ा समाचार दिया है। पत्र लिखता है, माँ के लिए चाय की प्याली हो, बच्चे की सेहत।
0: बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। और भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने इंग्लैंड को पेनल्टी शूटआउट में 3-2 से हराकर एफआईएच प्रो लीग में जीत के साथ अपना अभियान संपन्न किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi attends Seychelles National Day celebrations as guest of honour. Also holds talks with his Mauritius counterpart Naveen Chandra Ramgoolam. United States and Iran agree to halt counter-strikes and resume talks in Qatar's capital Doha tomorrow. President Draupadi Murmu to present gallantry awards at Defence Investiture Ceremony at Rashtrapati Bhavan today. IMD issues red alert for very heavy rainfall over sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And in hockey, India beat England 3-2 in penalty shootout to finish FIH Pro League campaign on a winning note. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi attended the National Day celebrations marking the 50th anniversary of the independence of Seychelles. Mr. Modi attended the celebrations as the guest of honour, becoming the first Indian Prime Minister to be accorded this honour. More from our correspondent.
3: An Indian marching contingent comprising Navy and Army teams participated in the parade. An Indian naval band also formed part of the Indian marching unit, underlining the close and special India-Seychelles partnership. In a special gesture, INS Tarkash and INS Ikshak were docked at Port Victoria, highlighting India's long-standing friendship with Seychelles. PM Modi conveyed India's warm wishes to the people of Seychelles on this historic occasion. Mr. Modi arrived in Seychelles on Saturday at the invitation

0: 2560101। नागपुर बाहर से फोन करने वाले श्रोताओं ने 0712 ये एसटीडी कोड लगाना है। जी हाँ, 0712। डॉक्टर सुशील मानधनिया, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: गुड मॉर्निंग, नमस्कार।
0: नमस्कार
1: नमस्कार
0: डॉक्टर, आज हम लंग्स कैंसर इसके बारे में स्पेशली बात करने वाले हैं। तो लंग्स कैंसर जो पहले होता था, यानी बहुत आज बदलाव आए हैं, तो पहले जो होते थे, पहले का कैंसर और आज होने वाला कैंसर, इसमें कुछ डिफरेंस है क्या?
1: हाँ जी, देखिए मैं इसका उदाहरण देता हूँ कि पहले जो चिकन पॉक्स था वो माता जी था
0: जी,
1: आज वो चिकन पॉक्स है।
0: अच्छा,
1: था तो वही एग्जैक्टली सेम डिजीज था, मैलिग्नेंसी, लंग कैंसर। सिम्टम्स

0: विद द मैलेग्नेंसी, लंग कैंसर.
1: जी
0: सिम्टम्स साइंस तो सेम है बट पैटर्न हैव चेंज. पहले
1: अच्छा
0: लंग कैंसर की जो जानकारी थी वो लंग कैंसर ही थी, बस हो गया लंग कैंसर.
1: जी
0: बट उसका जो रूट्स तक नहीं थे हम कि भाई लंग कैंसर के भी बहुत सारे प्रकार है. एडिनो है, स्क्वैमस है, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा है, कभी कभी लिम्फोमा भी रहते हैं. ये
1: अच्छा
0: पहली जानकारी, ये बायोफ्रगेशन हुआ. फिर बाद में समझ में आया कि कुछ लंग कैंसर ऐसे थे जो दवा को रिस्पॉन्ड करते थे, कुछ करते ही नहीं थे. स्मोकर्स अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते थे, नॉन स्मोकर्स अलग तरह के रिस्पॉन्ड करते थे. फिर जैसे जैसे हमारा इसके समझ, बायोलॉजी ऑफ द डिसीज हमको समझ में आई,
1: जी
0: वैसे वैसे वी आर मोर स्मार्टर इन ट्रीटिंग द डिसीज. मैं एग्जाम्पल देता हूँ इसमें. जैसे कई बार कैसा होता है ना कि जो आपका जो प्रश्न है कि लंग कैंसर में डिफरेंस, तो ये
1: हाँ
0: मेजर जो हम जो डिफरेंस देखने को मिलता है,
1: जी
0: ये हमारा वेस्टर्न पॉपुलेशन और इंडियन पॉपुलेशन ऐसा देखने मिलता है. क्योंकि
1: अच्छा
0: वेस्टर्न पॉपुलेशन में जो पाश्चात्य जो संस्कृति देती थी, स्मोकिंग इज मोर कॉमन.
1: जी जी
0: हमारे यहाँ
1: जी
0: पे स्मोकिंग से ज्यादा ओरल टोबैको इज मोर कॉमन. तो हमारे यहाँ
1: जी
0: के जो लंग कैंसर आर मोस्टली लिंक्ड टू दी वन इज स्मोकिंग, जिसमें तो कोई डाउट नहीं है, बट बहुत सारे बाकी फैक्टर्स है, दैट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि इंडस्ट्रियल पोल्यूशन, व्हीकुलर पोल्यूशन, बायोमास बर्निंग, कोल बर्निंग, गोबरियों का जो है धुआं है, इंडोर जो पोल्यूशन होते है
1: जी
0: ना,
1: जी जी
0: और कभी कभी इंडस्ट्रियल पोल्यूशन जहाँ पे बहुत सारे फ्यूम्स है, गैसेस है, एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज है, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर. तो हमारे देश में आप देखोगे कि नियरली 30%, 35% पेशेंट्स ऐसे आते हैं हमारे पास
1: जी
0: जो हिस्ट्री नहीं होती इनकी स्मोकिंग की. तो
1: अच्छा
0: प्रश्न हमारे पास ये होता है, डॉक्टर साहब ये तो कुछ भी नहीं करते, ये तो सोप भी नहीं खाते, ये तो चाय चा सुधा नहीं
1: अच्छा
0: पिए, अन्ना कसा का झाला, ऐसे
1: यानी
0: प्रश्न
1: लंग्स
0: होता. हाँ
1: डैमेज होता है
0: हाँ
1: लेकिन वो अलग अलग तरीकों
0: यस
1: से
0: यस यस
1: डैमेज
0: यस
1: हो जाता है. डॉक्टर, इसके बारे में एक प्रश्न है, हम कॉल लेते हैं. हेलो.
2: हाँ, नमस्कार डॉक्टर साहब.
0: हाँ
2: हाँ
0: जी,
2: जी
0: से बोला
1: नमस्कार.
2: सर. मला विचारायचं जसं टीबी व निमोनिया हे पण लंग्सच्या रिलेटेड डिसीज आहे,
0: ओहो.
2: म्हणजे लंग्स लावतात. जसं टीबीचं जे परीक्षण करतो थुंकीवरून, यांना टीबी झाला आहे तर ते निदान करतात व वेगवेगळ्या चाचण्या. तर जसं लंग कॅन्सर झाला तर कोणची चाचणी होते व त्यांना असं समजेल की बा त्यांना लंग कॅन्सर झाला आहे.
0: बहुत अच्छा प्रश्न है. एक पहला था कि टीबी, दूसरा था निमोनिया. ये दोनों भी चीज़ें जो होती है ना लंग कैंसर में कन्फ्यूजिंग होती है,
1: जी
0: और यही कारण होता है कि हमारे देश में मैक्सिमम टाइम अगर हमारा जो डेटा देखते हैं हम, अगर किसी पेशेंट्स को लंग में जो, ये कैसा डिपेंड करता है कि व्हाट इज द मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, मुझे ये पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट किए. कई
1: अच्छा
0: लंग कैंसर का जो हमारा जो डेटा है, दिस इज माई हॉस्पिटल डेटा मैं बोल रहा हूँ, आउट ऑफ 100 पेशेंट्स 4 ही पेशेंट ऐसे थे जिनको सर्जरी लायक थे. नियरली 96% वेयर वेरी एडवांस, विच वेयर नॉट कैंडिडेट फॉर सर्जरी. इतना एडवांसेस
1: अच्छा
0: बीमारी आते. देर वॉज ओनली वन कैवेट, एक ही जगह पे ऐसा गड़बड़ एक चेंज हुआ था, दैट वॉज ड्यूरिंग दी कोविड. कोविड में क्या होता कि बिकॉज ऑफ लंग इन्फेक्शंस लॉट ऑफ पेशेंट्स, बहुत सारे मरीजों में सीटी स्कैन हुए थे,
1: जी जी
0: उनमें से
1: जी
0: हमारे पास 2 मरीज ऐसे निकले थे जिनका बहुत ही अर्ली स्टेज में गांठ थी जो कि एसिम्प्टोमेटिक थी और जो
1: अच्छा
0: क्यूरेबल हुई सर्जरी के बाद में.
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: एक चीज समझना पड़ेगा कि एक तो लंग कैंसर के सिम्टम्स बड़े वेग होते हैं,
1: जो
0: जनरली दे आर
1: समझ में
0: डाइंग.
1: नहीं
0: हाँ,
1: आते.
0: बड़े समझ भी नहीं आते, क्रोनिक थोड़ा सा कफ हो रहा है, हल्का सा
1: हाँ
0: खांसी है,
1: हाँ
0: जो हाँ भाई वे इनको तो इनको है ही, या ना अस्थमा से
1: जी
0: त्रास है,
1: जी
0: या ना तो पॉल्यूशन से एलर्जी है, या ना कशाते तरी एलर्जी है, आणि दर महिन्याला 2 महिने तो होतोच है ना असं.
1: हो
0: तो
1: हो
0: वो ऐसा करके कई बार चेंज चीज हो जाती है.
1: जी
0: तो
1: जी
0: जनरली जो ये जो बोल रहे हैं ना, निमोनिया एंड प्लूरल
1: टीबी
0: ट्यूबरक्लोसिस इज द वन ऑफ द कॉमनेस्ट कन्फ्यूजिंग विद द लंग
1: जी, इन
0: सिम्टम्स में,
1: पेशेंट्स
0: सिम्टम्स
1: ने
0: यस.
1: हमेशा चेकअप करते रहना चाहिए.
0: हाँ, जो इनका जो प्रश्न है कि भी लंग कैंसर का डायग्नोसिस, वो हम काफी डिटेल्स में जाएंगे इसमें,
1: जी
0: बिकॉज ये जो दोनों क्वेश्चन थे इनके कि लंग कैंसर और टीबी, लंग कैंसर और न्यूमोनिया, दिस आर वेरी गुड क्वेश्चन, बिकॉज ये हमारे लिए हरदम का प्रॉब्लम होता है. और हमारे पास जब पेशेंट कहीं और से मरीज रेफर होके आते हैं, या तो कई बार वो बहुत सारे ट्रीटमेंट लेके आते हैं, उनमें ये कॉमनलिटी रहती है कि वो टीबी की
1: जी
0: ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, या तो उनका जो ब्रोंको एलुलर लंग पैटर्न होता है जो कि निमोनिया जैसा प्रेजेंट करता है, तो वो
1: अच्छा
0: एंटीबॉडीज का भर बहुत सारा कोर्स लेके हमारे पास आ चुके होते हैं इसमें. तो दैट मीन्स दिस आर द कॉमन कन्फ्यूजिंग फैक्टर्स और द साइंस, नॉट सिम्टम. ये साइन मन
1: अच्छा
0: जो
1: अच्छा
0: डॉक्टर देखता है विद द लंग कैंसर. तो इसका एक
1: अच्छा
0: बहुत डिटेल डिस्कशन हम डेफिनेटली करेंगे.
1: जी
0: हाँ,
1: जी और ये थर्ड और फोर्थ स्टेज में आ जाते हैं तो बहुत
0: जनरली 4 स्टेज में ही मिलते
1: जी.
0: हैं हमको.
1: अगर इस स्टेज में आते हैं तो आप प्रॉब्लम्स भी डायग्नोस करने के लिए बहुत फेस करने पड़ते होंगे, तो क्या तकलीफ या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं
0: देखिए कैसा
1: इनके?
0: होता है कि जब पेशेंट 4थे स्टेज में आते
1: जी
0: हैं या
1: जी
0: एडवांस स्टेज में आते हैं, तो ऑलरेडी ही इज लोडेड विद दी बीमारी. बीमारी का बहुत स्ट्रांग लोड होता है, तो उसके कारण उसका सिम्टम्स भी बहुत हॉट होते हैं।
1: अच्छा, तो देख कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं।
0: कॉम्प्लिकेशंस का मतलब

0: होता है, देर आर टू टाइप्स ऑफ कॉम्प्लिकेशन. वन इज
1: जी
0: कॉम्प्लिकेशन ऑफ द डिसीज, बीमारी के कॉम्प्लिकेशन. वन मे बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द ट्रीटमेंट. तो हम दोनों को अलग करके देखेंगे. तो जब बीमारी का जब नीचे का स्टेज है तो उसके सिम्टम्स भी उतने कम है, ट्यूमर लोड भी कम है, तो सिम्टम्स भी कम रहते
1: जी
0: और उसके जो उसके होने वाले जो नुकसान है वो भी कम रहते हैं. पर
1: अच्छा
0: हम जब देखते हैं तो हमारे पास तो पेशेंट ऐसे स्थिति में आता है जब ऑलरेडी बहुत लोडेड है डिजीज से, बहुत सिम्टोमेटिक है पेशेंट. तो इसका मतलब है कि बीमारी की उग्रता और बीमारी का वॉल्यूम ये बहुत ज़्यादा है. तो हम जो देखते हैं जैसे पेशेंट आते हैं ना, बहुत कंटिन्यूसली कॉफ है, ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती है उनको, छाती में पेन होता है उनको कई बार उसको,
1: जी
0: बिकॉज ऑफ द
1: जी
0: रिब
1: जी
0: इरोजन. जब ये पेरिफेरल ट्यूमर रहते हैं ना, रिब को इरोड करते हैं, तो रिब
1: अच्छा
0: का जो पेरियोस्टम है दैट इज पेन सेंसिटिव, तो उसके कारण काफी पेन होता है. ऐसे खांसी की दर्द होता है उनको
1: अच्छा
0: बिकॉज ऑफ द
1: अच्छा
0: स्ट्रेचिंग ऑफ द पेरी जो प्लूरल थिकनिंग बोलते हैं ना, वो स्ट्रेचिंग का. थोड़े लेटर स्टेज में पेशेंट को ना दम लगने के कारण देखते तो एक्सरे में पानी भरा हुआ मिलता है इनको, खांसी होती है, नॉन स्टॉप कॉफ रहता है इनको, कॉफ में
1: अच्छा
0: खून आना
1: अच्छा
0: शुरू हो जाता है.
1: जी
0: और जब
1: जी
0: एक्सरे करते हैं तो कई बार क्या होता है, एक्सरे में एक सफ़ेद पैच जैसा दिखता है, या अच्छा एक्सरे में पानी दिखता है, या जो दो फेफड़ों के बीच की जगह मिड इंटेस्टाइन है वहाँ पे वाइटनिंग दिखती है.
1: जी जी
0: तो दिस
1: जी
0: आर वेरी वेग सिम्टम्स, क्योंकि
1: जी
0: एक्सरे इज नॉट ए वेरी गुड
1: जी
0: इन्वेस्टिगेशन, बट दिस इज अ
1: डॉक्टर इसके
0: बेसिक
1: बारे में
0: इन्वेस्ट.
1: हम चर्चा करेंगे।
0: हाँ
1: कॉल लेते हैं।
0: हाँ
1: हेलो
0: प्लीज. हाँ
1: हेलो।
0: मैडम नमस्कार.
1: हाँ
0: हाँ
1: नमस्कार,
0: बोलिए ना.
1: बोलिए।
0: सुशील मानधनिया सर, गुड मॉर्निंग.
1: नमस्कार नमस्कार सर, बोलिए.
0: नमस्कार, मैं घाटंजी जिला यवतमाल से सुरेश कुमार पुट्टजवार बात कर रहा है.
1: सूरज जी बोलिए ना.
0: मेरा सवाल ऐसा है कि खांसी के वजह से लंग कैंसर के लक्षण है क्या सर?
1: खांसी के वजह से लंग कैंसर, खांसी लंग कैंसर के सिम्टम्स है ठीक है,
0: जी है
1: पर
0: क्या?
1: खांसी की वजह से लंग कैंसर नहीं होगा. पर हाँ हाँ
0: जब अगर किसी में लंग कैंसर की संभावना है तो उसमें वन ऑफ द सिम्टम्स, सिम्टम्स का मतलब है एक लक्षण, खांसी रह सकता है.
1: अच्छा
0: और अगर आप कॉमनेस्ट लक्षण भी पूछोगे तो खांसी रहती हो. तो
1: जी जी
0: जनरली ऐसे मरीज कई बार बहुत ही लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ करके आते हैं, तो पहला रहता है लॉन्ग स्टैंडिंग कॉफ, चेंज इन वॉइस, आवाज़ में फर्क होता है कई बार, हो सकता है आवाज में जैसे बोलते हैं ना हॉर्सनेस ऑफ वॉइस, हाँ हॉट पोटैटो स्पीच जैसे
1: अच्छा
0: कई बार
1: अच्छा
0: उनके वजह क्यों होता है,
1: जी
0: क्योंकि जब वो
1: जी
0: गार्ड अंदर की नर्व पे डैमेज करती है तो नर्व डैमेज होने के कारण उसकी आवाज़ में हॉर्सनेस आ जाता है, ऐसा भारीपन आ
1: अच्छा
0: जाता है इसमें कई बार ना. एडवांस स्टेजेस में ब्रेथलेसनेस, सांस फूलना, दम लगना, खांसी में से ब्लड आना, ये सब एडवांस स्टेजेस में. और जनरली हम जब देखते हैं ना, हमारे पास बहुत सारे मरीज ऑर्थोपेडिशियन से या न्यूरोलॉजिस्ट न्यूरोसर्जन से रेफर होते हैं. वो क्यों
1: जी
0: होते हैं,
1: जी
0: क्योंकि वो कई बार वो स्पाइन में स्प्रेड होता है, स्पाइन में स्प्रेड कारण पीठ में दर्द या हड्डियों में दर्द, या तो स्पाइन में कॉम्प्रेशन के कारण दोनों दोनों पैरों में कमजोरी. तो ये दिस इज द एडवांस स्टेजेस ऑफ लंग कैंसर, जहाँ पे बीमारी ऑलरेडी अपनी
1: फैल
0: जगह छोड़
1: चुकी
0: के
1: है।
0: हड्डियों में या ब्रेन में, लंग्स में फैल जाती है. तो
1: जी
0: कॉमनेस्ट
1: जी
0: जो रहता है लंग कैंसर का प्रेजेंटेशन, पहले लंग, दूसरा प्लूरा, तीसरा छाती में पानी, मिड इंटेस्टाइन में छाती की गांठों में गांठें आना, लीवर में स्प्रेड, बोन स्प्रेड और ब्रेन मेटास्टेसिस, ब्रेन
1: अच्छा
0: ब्रेन में भी स्प्रेड हो जाता. तो दिस आर द
1: जी
0: वेरी, और जनरली हम जो देखते हैं ये एडवांस स्टेजेस या फोर्थ स्टेज में ही देखने को मिलता है.
1: बट डॉक्टर इसके बारे में आजकल न्यू टेक्नोलॉजी बहुत आई है, तो माननीय सर कि आजकल न्यू टेक्नोलॉजी की वजह से हम थर्ड या फोर्थ स्टेज में पेशेंट को बचा सकते हैं?
0: देखिए कैसा होता है कि जो मोड ऑफ
1: हाँ डॉक्टर इसके
0: प्रेजेंटेशन.
1: बारे में हम बात
0: हाँ
1: करेंगे।
0: हाँ
1: कॉल
0: प्लीज
1: लेते हैं।
0: प्लीज.
1: हेलो
0: हेलो मैम, नमस्कार.
1: नमस्कार
0: आणि सरांना पण माझा नमस्कार.
1: नमस्कार मॅडम बोला.
0: तर मी नीता झाडे बोलते आहे नागपूरहून. मला ना 10 वर्षाआधी खूप खोकला राहायचा. तेव्हा तर खोकल्याचं तर मी ट्रीटमेंट वगैरे झालं, एक्झर्शन मुळे वगैरे व्हायचा पण आहे. पण आता मला ना गळ्यात ना असं अडल्यासारखं होतं आणि जाड पण वाटतोय जिभेच्या तिथे. तर काय हे कॅन्सरचं लक्षण असू शकतं का?
1: खाओ
0: मी
1: मॅडम,
0: अजून
1: इतकं सकाळी
0: ट्रीटमेंट
1: सकाळी
0: केली नाही.
1: कौन
0: सकाळी सकाळी इतकं टेन्शन घेता तुम्ही, काही नाही ते.
1: नाही
0: 10 वर्षाआधी खोकला होता ते, नाही
1: डॅट इज ओके. गले में अटकना है तो दिस कैन बी फेरेंजाइटिस और सम इन्फेक्शन. बट मेरी सलाह रहेगी कि अगर 2 हफ्ते से ऊपर का सिम्टम्स है तो पहले एक ENT वालों को अच्छे से दिखा देना चाहिए. जी
0: बिकॉज कैसा
1: जी
0: होता है ना कि भाई देखो डॉक्टर क्या बोलता है, 1000 में से 1 हो सकता है, ये डॉक्टर की भाषा होगी ना. अब तुम्हारी भाषा में क्या होगा, या तो हो सकता है तो नहीं हो सकता, 100 या 0
1: जी
0: हो गया ना. तो
1: हाँ
0: बेहतर रहता है कि भाई जो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट अगर 2 हफ्ते में नहीं होता है तो वी शुड कंसल्ट एक्सपर्ट, सो दैट कि वो जो शंका है
1: जी
0: वो एक बार वो कीड़ा दिमाग से निकल जाना चाहिए.
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: कैसा है ना कि उसके साथ में रहना बहुत डिफिकल्ट है, नींद नहीं आती, खाना नहीं होता, एंगजाइटी रहती, चिड़चिड़पना बढ़ जाता. और कई बार पेशेंट ये जांच कराते नहीं क्योंकि यार काई तो निगुंज आना, मैं फालतू से स्ट्रेस वाड़ना रहा
1: इस डर
0: अपना,
1: से
0: ऐसा
1: ही
0: भी रहता
1: जाते
0: है,
1: नहीं
0: बहुत होता
1: डॉक्टर
0: है.
1: के
0: तो
1: पास.
0: मुझे लगता है कि नीता जी को इतना डरने की जरूरत नहीं, पर मेरी सलाह रहेंगे कि ENT एक्सपर्ट से मिल ले तो थोड़ा सा समाधान हो जाएगा, कि भाई
1: अच्छा
0: सही निदान होने की संभावना रहेगी पूरी.
1: जी जी डॉक्टर मानधनिया हम बात कर रहे थे कि न्यू
0: न्यू
1: टेक्नोलॉजी
0: टेक्नोलॉजी.

0: एंड
1: आज क्या
0: डायग्नोसिस।
1: बदलाव
0: देखिए
1: आए
0: कैसा होता था कि मोड ऑफ
1: डॉक्टर फिर से इसके बारे
0: प्लीज
1: में हम
0: प्लीज।
1: बात करेंगे।
0: हाँ
1: एक
0: हाँ
1: कॉल
0: जी
1: लेते हैं। हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम. मला सरांना विचारायचं आहे की लंग कॅन्सर वर कोणत्या नवीन औषधी आलेल्या आहेत आणि त्या सामान्य माणसाला अफोर्डेबल आहे का, आणि जर नाही तर गव्हर्नमेंट किंवा कोणी त्याच्यासाठी हेल्प करतं का आपल्याला ट्रीटमेंट घ्यायला.
1: बर
0: बहुत अच्छा प्रश्न है कि न्यू मेडिकेशंस और हेल्प।
1: कॉस्ट.
0: देखिए कैसा है कि जो नए ड्रग्स आए हैं, देर आर लॉट ऑफ न्यू ड्रग्स इन लंग कैंसर। अब
1: जी
0: कुछ कुछ जो ड्रग्स है दिस आर ओरिजिनल मॉलिक्यूल्स जो इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है, पर देर आर लॉट ऑफ अदर ड्रग्स विच है वो जिसके ना पेटेंट एक्सपायर हो चुके हैं, तो उसके कारण ये जेनरिक अवेलेबल है और बहुत इजीली अवेलेबल है,
1: जी
0: और दे आर ऑल मोस्टली ओरल। आप कभी सोचोगे नहीं कि कभी ब्लड लंग कैंसर Stage 4 डिसीज ओरल टैबलेट से 3 महीने में 2 महीने में कंप्लीट रिस्पॉन्सेज है, पेट स्कैन में कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ये
1: अच्छा.
0: तो मिरेकल जैसा है ना, मैजिक बुलेट्स बोलते हैं इसको। तो ऐसे अवेलेबल। अब रही बात खर्चे की, देखिए कैसा ना, कॉस्ट इज ऑलवेज ए इशू इन इंडियन सेटअप, क्योंकि हमारे पास नियरली 80% जो पॉपुलेशन है वो अन अफोर्डेबल है या तो फिर सेल्फ पेइंग है। अब जो आयुष्मान योजना है मोदी जी का, जो बोलते हैं आयुष्मान योजना है,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: कारण काफ़ी मदद मिली है। CM रिलीफ फंड के कारण बहुत पेशेंट को मदद मिली, जिससे कि एटलीस्ट दे गेट दी ट्रीटमेंट। और एक PM फंड होता है जिसमें भी, तो एटलीस्ट उनको पैसे के अभाव में ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है इसमें। ठीक है,
1: अच्छा.
0: अब ऐसे कई मरीज होते हैं जो ये नहीं कर पाते, जैसे मेरे मैं जब मैं हर महीने गढ़चिड़ जाता हूँ शायद कम है, तो वहाँ के मरीज यार ये सब चीज़ें संभव नहीं, उनके लिए पेपर बनाना, कागज़ बनाना, उत्पन्ना का दाखिला और अवश्य दाखिला संभव ही नहीं उनके लिए कुछ भी
1: जी
0: करना।
1: जी जी
0: तो जब ऐसे मरीज मेरे पास नागपुर तक पहुँच जाते हैं तो दैट इज़ द ओनली इंडिकेशन कि ही शुड गेट ट्रीटमेंट, बस हो गया। अब मेरे
1: अच्छा.
0: को कहाँ से फंड लाना, क्या करना, दैट इज़ अवर जिम्मेदारी। तो वी हैव ए कैनकेट फाउंडेशन जो ये प्रोग्राम स्पॉन्सर करे,
1: हाँ
0: दैट कैनकेट फाउंडेशन टेक केयर ऑफ दिस टाइप ऑफ पेशेंट्स। क्योंकि
1: जी
0: ये पेशेंट मुझे पता है कि इनके पास ना तो आधार कार्ड रहने वाला, या सॉरी ये जो आयुष्मान वगैरह, इन बहुत ही मुझे आप सोच ही नहीं सकते ऐसे लेवल का इनका IQ रहता है।
1: जी
0: इनको
1: जी
0: कोई लाने वाला भी ऐसा बंदा होता है बेचारा जो कि सही में सोशल सर्विस करते हुए इनको इतने दूर तक लेकर आता है।
1: जी
0: तो
1: जी
0: वी अडॉप्ट दिस टाइप ऑफ पेशेंट बाय आवर
1: अच्छा
0: ट्रस्ट सो दैट दे शुड गेट द ट्रीटमेंट। और ऐसे मरीज के लिए भी हम खुद जाते हैं वहाँ
1: जी जी
0: चंदगांव
1: जी
0: महीने में एक बार, और वी अरेंज फंड्स फॉर देम, ड्रग्स एवरीथिंग इज फ्री फॉर देम ऐसे
1: अच्छा
0: मरीज को, बिकॉज कि दे डिजर्व ट्रीटमेंट और इसके रिजल्ट्स आर ड्रामेटिक, बहुत
1: जी जी
0: ड्रामेटिक
1: जी
0: ट्रीटमेंट होते हैं। और सबसे अच्छी बात हो ये होती है कि इसमें ना तो भर्ती है, ना तो कीमोथेरेपी है, ना तो एडमिशन है, ना तो हेयर लॉस है, ना तो साइड इफेक्ट्स है, गोली खाओ घर पर रहो अच्छे से, तो
1: अच्छा.
0: दे रिस्पॉन्ड वेरी नाइसली। अब मेन इसका एक ही होता है कि भाई करेक्ट डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ इसकी इसकी मॉलिक्यूलर मार्किंग, मुझे कैसा होता है ना कि ये कौन सी दवा को रिस्पॉन्ड करेगा, ऐसा तो ऐसा ऐसा कैसा मालूम पड़ेगा आपको ना, तो उसके लिए टेस्ट होती है। जैसे उसमें ना हम ब्लड का सैंपल होता है या तो बायोप्सी का टिश्यू होता है जिसमें EGFR, ALK, ROS, PD-L1 एटलीस्ट ए मिनिमम इतने मार्कर्स करते हैं, पर ऐसे
1: जी
0: 12
1: जी जी
0: मार्कर्स और है, BRAF, NRAF, ये सब चीज़ें जो होते मार्कर्स जिसके कारण हम उसको स्पेसिफिकली एक टारगेट दवा दे सकते हैं।
1: अच्छा.
0: तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि अगर कोई मरीज है जिसका Stage 4 बीमारी है, लंग में बीमारी था, ब्रेन में चले गया है, पर अगर ये ALK पॉजिटिव, तो ऐसे पेशेंट 7-7 साल से जिंदा है। ये असंभव था, मुझे मेरे सोच के बाहर था। जब हम कैंसर की ट्रेनिंग गया, जब मैं टाटा में था, मैं एम्स में था, तब तक भी ऐसी कोई दवाई नहीं आई थी जो कि ब्रेन में कैंसर को क्लियर कर दे या तो ब्रेन के
1: जी
0: कैंसर
1: जी
0: को
1: जी
0: स्टेबलाइज कर दे। अभी हमारे पास ऐसी दवाई कि जिसके कारण एक गोली रोज खाते पेशेंट, और 5 साल 6 साल 7 साल जो एवरेज लॉलर जो डेटा है लॉलाटिनिब का वो 7 ईयर्स का DFS है, मुझे
1: अच्छा अच्छा
0: अनबिलीवेबल है। तो मुझे
1: यानी
0: विदाउट
1: न्यू
0: हाँ
1: टेक्नोलॉजी की वजह से आज बहुत सी बारकाइयां हम देख सकते हैं और
0: यस हम
1: उसके
0: बेहतर समझ सक
1: हाँ
0: रहे हैं। मुझे कैसा होता कि पहले लंग कैंसर एक बीमारी थी बस,
1: जी जी
0: अब
1: जी
0: लंग कैंसर में भी कम से कम 15 से 20 अलग अलग टाइप्स है, और वो टाइप्स को समझ पाने के कारण हम स्पेसिफिकली
1: अच्छी
0: वो टाइप के लिए,
1: मेडिकेशंस हम कर सकते
0: हाँ
1: हैं.
0: अच्छी तो पहले भी करते थे, अब वो वही टाइप को जो दवा लगनी है वही लगा दे पा रहे
1: जी
0: हैं, है ना।
1: जी जी
0: कई बार कैसा होता था कि सभी टाइप को एक ही देते थे जो संभव नहीं हो पाता था,
1: हाँ
0: तो हो
1: हाँ
0: सकता था कि उसमें से जो टाइप रिस्पॉन्ड करना उतना करता था, बाकी के जितने भी टाइप तो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते थे। इसलिए वो
1: जी
0: Stage 2 Stage 3 के पेशेंट कुछ रिस्पॉन्ड करते थे, कुछ 2 साइकिल में प्रोग्रेस हो जाते थे। तो नाउ वी हैव डिसेक्टेड द डिसीज, इतने
1: अच्छा
0: बारीक
1: अच्छा
0: डिसेक्शन हुआ है इसमें कि EGFR को क्या दवा लगेंगी, EGFR में भी हाई रिस्क EGFR को क्या दे सकते हैं अपन, ALK पॉजिटिव में भी ब्रेन वाले को क्या देना है, लोकल वाले को क्या देना है, ALK में भी 5 मेडिसिन अलग है, ROS में भी बहुत सारे मेडिसिन है, PD-L1 में
1: जी
0: भी है,
1: जी जी
0: BRAF पॉजिटिव के अलग है, PIK3 म्यूटेशन के मेडिसिन अलग है। तो क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे हम बीमारी को और बेहतर समझ रहे हैं, वैसे वैसे नए नए जो उनके जो ड्राइविंग म्यूटेशन है, अभी कार आपकी कार बाहर खड़ी है ना, वो चल थोड़ी रही है, पर उसको ड्राइवर तो लग रहा है ना,
1: जी
0: अगर वो ड्राइवर पकड़ ले हम कौन ड्राइवर है, अगर उसको टारगेट करे तो वो आपकी गाड़ी रुक जाएगी। तो एग्जैक्टली लंग कैंसर में अगर हम ड्राइविंग

0: म्यूटेशंस को सही तरीके से पकड़ते हैं, तो उसके अगेंस्ट में अगर दवा
1: ट्रीटमेंट भी
0: अवेलेबल
1: अच्छी।
0: है तो
1: हाँ
0: डेफिनेटली बीमारी आपको रोकना है। तो नाउ वी आर कन्वर्टेड दी स्टेज फोर कैंसर इंटू द क्रोनिक डिसीज। क्रोनिक,
1: अच्छा
0: पहले कैसा था, कैंसर को खत्म कर दो, किल कर दो, अब वो कंसेप्ट नहीं रहा। स्टेज फोर में कैंसर को कंट्रोल करो एंड गिव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइक डायबिटीज, ब्लड
1: जी जी
0: प्रेशर।
1: जी
0: आप क्या कर रहे हो ना, शुगर बढ़ता है तो इंसुलिन देते हो, बीमारी कंट्रोल आ
1: हाँ
0: गया, आप
1: कंट्रोल
0: टैबलेट्स में मेंटेन करते हो।
1: जी
0: तो
1: जी
0: सेम इज विद द मैलिग्नेंसी नाउ, कि हम ऐसे मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं जिसमें जो कि टारगेटेड है बीमारी के कंट्रोल के लिए है, बीमारी के साथ में पेशेंट इस क्वालिटी ऑफ लाइफ इज फिनोमिनल। आपको समझेगा भी नहीं कि कैंसर का स्टेज फोर का मरीज है
1: अच्छा वो
0: जो इतनी अच्छी
1: नॉर्मल
0: नॉर्मल
1: जीवन
0: लाइफ जी
1: जी
0: रहा है इसमें।
1: सकता है।
0: यस
1: जी जी श्रोताओं आप सुन रहे हैं कैन केयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदास पेठ नागपुर। हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम और आज का विषय है कर्क रोग, लंग्स कैंसर। और इसके इस विषय पर हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया। आप सवाल पूछ सकते हैं, कुछ प्रश्न है तो जरूर पूछिए। फोन नंबर्स इस प्रकार हैं 2529266 और 2560101। नागपुर बाहर से आप फोन कर रहे हैं तो एसटीडी कोड जरूर लगाएं। जी हाँ 0712-0712। डॉक्टर जैसे
0: एक और
1: आपने
0: उदाहरण देता हूँ
1: जी
0: जो आपने
1: जी
0: मुझे बोला था ना,
1: हाँ
0: एक मेरी पेशेंट है जो कि लंग कैंसर है, स्टेज फोर कैंसर है,
1: जी
0: उसका बेटा रहता है यूएस, वो ही वॉज नॉट मैरिड,
1: जी
0: तो उसकी ज़िंदगी की एक ही थी कि मेरे बच्चे की शादी हो जाए, मेरे बच्चे, उसको कोई लेना देना नहीं था कि उसको कैंसर हुआ है, लंग कैंसर है, स्टेज फोर है, तो उसकी एक इच्छा थी कि मैं यूएस जाऊँ।
1: जी
0: शी वॉज स्टेज फोर डिसीज, चौथे स्टेज में बोल रहा हूँ मैं आपको, ठीक है,
1: अच्छा अच्छा
0: मतलब डेफिनेटली तुम जाओगे। अनफॉर्चुनेटली शी वॉज ई जे फॉर पॉजिटिव। हमने उसको एक ऑस्टियोमेटिक नाम की टैबलेट भी शुरू किया, आफ्टर 2 मंथ्स अप्रॉक्सीमेटली हमने पेट स्कैन किया, शी हैड ए कम्प्लीट रिस्पॉन्स। मैं जाऊँ क्या, मतलब बिल्कुल जाओ।
1: अच्छा
0: और वो जब वो गई, हर रोज एक मुझे एक फोटो भेजती थी,
1: जी
0: आज
1: जी
0: मैं यहाँ
1: जी
0: हूँ, आज मैं ये लेक पे हूँ,
1: उनके लिए और आपके लिए
0: मतलब
1: दोनों के
0: मुझे
1: लिए ये
0: ले,
1: मिरेकल हो गया।
0: इट वॉज सो सेटिस्फाइंग फॉर ए डॉक्टर की ना, तो वो
1: हाँ
0: कि आपके आपके कुछ ट्रीटमेंट से या कुछ इंटरवेंशन से, आपके छोटी
1: जी
0: सी मदद से पेशेंट की वो इच्छा कंप्लीट हुई है। और शी इज इन मेरे जो हरदम आई वॉज प्रेइंग हरदम, भैया इसको वहाँ कुछ ना हो, क्योंकि ट्रीटमेंट का जो फास्ट, हम जितना फास्ट हमारा अप्रोचेबल है उतना वहाँ नहीं होता है।
1: जी
0: तो व्हेन शी केम बैक अगेन आई वाज सो रिलीव्ड, चलो अच्छा है, नाउ इट शी इज इन माय जोन। तो दिस इज द
1: अच्छा
0: टाइप।
1: जी डॉक्टर मानधनिया, जैसे लंग्स कैंसर के बारे में हम बात
0: हाँ
1: कर रहे हैं
0: हाँ
1: तो बायोप्सी की जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं क्या? इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक कॉल लेते हैं।
0: श्योर श्योरली।
1: हेलो।
2: हेलो,
1: हाँ नमस्कार।
2: नमस्कार मैडम। नमस्कार सर, मैं रानू
0: नमस्कार।
2: बोल रही हूँ शंकरपुर से।
0: हाँ
2: हाँ
0: रानू जी
2: सर, मेरा
0: बोलिए।
2: ये सवाल था कि ये जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो करते हैं, उनसे यदि बोलो कि स्मोकिंग ना करें या वो करें करके, तो उनका ऐसा मानना है सर कि स्ट्रेस कम हो जाता है या फिर उनको रिलीफ मिलता है, तो ये कहाँ तक सच है? और सर दूसरी चीज ये थी, मुझे ये पूछना था कि इनके लिए ये तो मतलब खुद से प्रिकॉशन नहीं लेते, उनके घर वाले क्या करें ताकि वो ना करें?
0: वो आपने हिंदी पिक्चर गाना सुना है कि मैं फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया।
1: जी
0: इनके
1: जी
0: इनके लिए
1: जी
0: वो प्रेरणादायक सॉन्ग होता है जो ये आप बोले ना,
1: हाँ
0: तो फिक्र को धुएं में उड़ाते लोग है, ठीक है। एक्चुअली कैसा है कि ये किक तो देता है डेफिनेटली, दैट इज द रीज़न ना कि अब लोग छोड़ नहीं पाते इसको, है ना। तो निकोटीन ऐसी जोरदार चीज़ है कि वो उनको किक देती हो
1: जी
0: डेफिनेटली। और ये नए जनरेशन कहीं ना कहीं, नई जनरेशन तो गलत शब्द बोल रहा हूँ मैं, ऐसा भी जनरेशन समझ, हमारी भी जनरेशन कहीं ना कहीं ऐसे इजी एक्सिट को ढूंढती है। और कई
1: हाँ
0: बार मैंने देखा कि जो ब्रेक होता है ना, ब्रेक
1: जी
0: ये ब्रेक, दूसरा सोशलाइजेशन। जैसे मेरा बेटा अभी बेंगलोर जाने वाला है तो बोलता है कि ब्रेक पापा, ब्रेक में ना बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेक लेना, बोले लोगों के साथ, मतलब क्यों पापा, बोले उस समय आईटी पार्क के लोग सब बाहर आते हैं, कोई गूगल से आता है, कोई मेटा का रहता है, तो अपनी बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है उन लोग में, तो ये ब्रेक के साथ में बाकी भी तो करते होंगे ना मैडम, मैं तो ब्रेक के साथ में स्मोकिंग मेजर कॉमन कॉमन रहता है,
1: जी
0: तो
1: जी
0: यू हैव डन, देयर इज अ कंपल्शन ऑफ द स्मोकिंग विद देम जस्ट टू गो
1: अच्छा
0: इन टू द ग्रुप। यहाँ से
1: हाँ
0: शुरुआत होती है जो
1: जी
0: मेरा समझ है, दिस
1: जी
0: वॉज माई डिस्कशन यस्टरडे विथ माई सन। तो
1: हाँ
0: ये ऐसी भी चीज़ें होती है। अब रही बात नुकसान की, डेफिनेट नुकसान तो होता ही है इसका, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो इंडियन सेटअप में नुकसान दो तरह के है ना, एक तो फिल्टर्ड स्मोकिंग और नॉन फिल्टर्ड स्मोकिंग, दो होती है अपने इसमें, जो कि वेस्टर्न में नहीं देखने मिलती है, वहाँ पे एक सिगार अलग चीज़ होगी, पर
1: जी
0: नॉन
1: जी
0: फिल्टर्ड स्मोकिंग जो बीड़ी वीड़ी का नुकसान बहुत ज़्यादा था, बिकॉज पार्टिकुलेट मैटर के जो रहता है टॉक्सिटी वो
1: अच्छा
0: अनफिल्टर्ड जाती है इसमें।
1: डायरेक्ट
0: स्मोकिंग का थोड़ा, वो स्मोकिंग में फिल्टर होने के कारण वो थोड़े से रुक जाते हैं, पर
1: जी
0: नुकसान दोनों के भी है। और जनरली लॉन्ग टर्म नुकसान सिर्फ कैंसर ही थोड़ी नुकसान होता है ना, बाकी भी तो बहुत सारे नुकसान है इसमें, जो लंग्स के टाइप डैमेज होता है, जो ब्रोंकाइटिस होता है, अस्थमा की संभावना बढ़ जाती है, रिपीटेड इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, लॉस ऑफ
1: जी जी
0: प्रोडक्टिविटी है, थकान आना है, ब्रेथलेसनेस होना है, तो ये भी

0: एक नुकसान ही है ना, हर चीज़ सिर्फ कैंसर को देख के नहीं होता, तो इतने सब स्पेक्ट्रम ऑफ द डिसीज मिल जाते हैं। और स्मोकिंग के अपने आप में और सारे बहुत सारे बीमारी हैं, थ्रम्बोवास्कुलर डेथ, एथेरोस्क्लेरोटिक डिसीजेज, हार्ट अटैक है, सेवी ब्रेन स्ट्रोक से, पेरिफेरल वास्कुलर डिसीजेज है, ये भी तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है ना। कैंसर तो बहुत पीछे आ रहा है इसमें, ये तो इसके पहले निपट जाते पेशेंट तो कहीं,
1: अच्छा,
0: तो वो भी चीज़ को ध्यान रखना है कि भाई एक ही चीज़ दी इसमें बहुत सारी चीज़ें, नुकसान तो डेफिनेटली है। अगर पहला चीज़ होता है कि भाई डिक्रीज, पहला चीज़ है डिक्रीज करो, दूसरा चीज़ है कि हो सके तो लो डोज सिटी स्कैन आते हैं ऐसे पेशेंट्स में जो
1: अच्छा
0: हाई रिस्क कैंसर के मरीजों में होते हैं। अब उसके लिए भी एक नई स्टडी आती है इसको में कि भाई लेंथ से देखने का कि नंबर ऑफ पैक ईयर से देखना, क्योंकि हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ पैक ईयर समझ ही नहीं किसको पूछना, क्योंकि कितने सिगरेट कितने पी रहा है वो कोई बताता क्या कभी, है
1: नहीं,
0: ना,
1: और
0: पाँच
1: सच
0: दो
1: बात तो
0: दो नस
1: नहीं
0: घेतो
1: बताई।
0: तीन नस घेतो ऐसे बोलते लोग,
1: अच्छा
0: जबकि पूरा पूरा पूरा पीते हैं।
1: जी
0: तो हमने देखा कि इसमें बेटर रहता है कि नंबर ऑफ ईयर्स इज द गुड मार्कर्स, अगर मोर देन 20 ईयर्स की स्मोकिंग हिस्ट्री है
1: जी
0: तो ऐसे मरीजों में लो डोज सिटी स्कैन होना चाहिए। दिस इज़
1: अच्छा
0: अ वेरी गुड स्क्रीनिंग मेथड, अगर इसमें अगर कुछ भी शंकादायक कुछ मिलता है तो दे आर द कैंडिडेट फॉर फर्दर इवेलुएशन,
1: अच्छा
0: या अदर
1: अच्छा
0: बायोप्सी, FNAC, ब्रोंकोस्कोपी, जो भी हो सकता है इसमें। तो हाई रिस्क इंडिविजुअल को स्ट्रेटिफाई करना और ऐसे लोगों को इंडिविजुअलाइज को अलग करना फॉर स्क्रीनिंग इज ए वेरी कॉस्ट इफेक्टिव मेथड, जिससे कि अपन जो हमारे रिसोर्सेज बहुत सीमित हैं तो हम अगर उसको अच्छी तरह से ट्रायज करें, अब मेरे जैसे को तुम्हारे जैसे को सीटी स्कैन कर लेंगे तो बहुत चांसेस कम मिलने वाले, वी आर नॉट स्मोकर्स, और
1: जी
0: हमारा लाइफस्टाइल भी थोड़ा बेटर है कि दिन भर धूप में नहीं खड़े हैं, धूल में नहीं खड़े हैं, इंडस्ट्री में नहीं खड़े हैं, हम पॉल्यूशन में नहीं खड़े, AC में बैठे हैं, कार में जाते हैं अपन, तो हमारी रिस्क बहुत कम हो जाती है।
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: हमारे में रिस्क फैक्टर्स कम रहती है, जीरो नहीं होगी, पर
1: जी
0: जो जो इंडस्ट्री में है या स्मोकर्स है या धूप में है या पोल्यूशन में है, साइकिल पे झूम रहे, टू व्हीलर पे जा रहे, इनकी रिस्क बहुत ज़्यादा होने वाली
1: जी
0: है।
1: और इन्होंने एक पूछा था कि घर के लोगों ने क्या करना चाहिए, अगर उन्होंने कैसे संभालना चाहिए जो
0: किसको,
1: स्मोकर्स।
0: स्मोकर को?
1: हाँ जी
0: वो
1: तो
0: डिफिकल्ट
1: उन्होंने
0: क्वेश्चन
1: क्या
0: ऐसा है,
1: करना
0: वो
1: चाहिए।
0: साइकोट्रिस्ट ही मिलना चाहिए उन्होंने तो, कि
1: जी
0: भाई साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, बट ठीक है,
1: हाँ
0: बट कैसा मॉडिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। पहला रूल रहना चाहिए भैया तो घर में नहीं स्मोक करेगा, तो
1: हाँ
0: एटलीस्ट पैसिव स्मोकिंग का काम खत्म हो गया आपका,
1: जी
0: बिकॉज पैसिव स्मोकिंग इज वन ऑफ दी अदर रीजन, 5 से 7 हज़ार डेली साल के मरीज होते हैं लंग कैंसर जो पैसिव स्मोकिंग से लिंक्ड होते हैं, जिनकी स्मोकिंग हिस्ट्री नहीं होती है, एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए। सेकंड थिंग इसकी भाई इसको थोड़ी धीरे धीरे वी शुड मोटिवेट देम। मुझे क्या होता है ना कि कई बार कोई लोग माता पिता के मोटिवेशन से कम होता है, किसी को आध्यात्मिक मोटिवेशन से कम होता है, तो वैसे चीज़ों से, बिकॉज हार्श हार्श जो चीज़ों से जनरली नहीं होता है इसमें।
1: जी
0: तो
1: जी
0: मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि डिक्रीज द वॉल्यूम, मतलब जैसे 20 पीते थे तो आप 3 या 4 पे आ जाए,
1: अच्छा
0: तो दैट
1: अच्छा
0: डिक्रीज इतना स्लोली, इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस।
1: बहुत
0: और
1: सही,
0: साथ
1: हम
0: में डी
1: से ये
0: एडिक्शन
1: सब।
0: भी होते हैं इसमें, निकोटीन की चिंगम्स आते हैं, पैचेस आते हैं, जो कि उनको थोड़ा सा उस तरह से किक मिलती है जो स्मोकिंग से मिल सकती है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा तो बेहतर है कि उन्होंने डॉक्टर के पास जाके दोनों का काउंसलिंग, फैमिली और
0: पर ये
1: पेशेंट्स का।
0: बोलना बहुत सिंपल है,
1: जी जी
0: डिफिकल्ट है। मैंने जितने भी पेशेंट्स मेरे पास देखे जिनको पूछता हूँ मैं कि आप स्मोकिंग करते हैं या तो खर्रा खाते हैं, डॉक्टर साहब छोड़ दिला, कभी छोड़ ला 3 महीने, मैं 100% बोलता हूँ 3 महीने बाद पहले इसलिए छोड़ा कि उसको बहुत बड़ा बॉम्ब फूटा हुआ है उसके दिमाग में, कि कहीं ना कहीं उसको समझ में आ जाता कि मुंह में इतना बड़ा गाठे कैंसर है,
1: जी जी जी
0: खांसी ज्वारी ने कैंसर की हो सकती है, तब जनरली वो छोड़ दे, अदरवाइज वो नहीं छोड़ते कोई भी।
1: जी
0: अगर उसने बोला है कि मैंने 3 महीने पहले या 2 महीने पहले छोड़ दिया, हम बहुत कॉन्शियस हो जाते हैं इसमें कि वी शुड नॉट मिस नाउ, क्योंकि
1: अच्छा
0: कोई भी मरीज इतने सालों से पी रहा था और अब क्यों छोड़ा, उसकी बीवी तो रोज दिमाग आती थी उसका, कभी नहीं छोड़ा उसने,
1: जी
0: तो
1: जी
0: दैट
1: जी
0: मीन्स दिस इज द टाइम कि वी शुड बी मोर अलर्ट।
1: अच्छा अच्छा डॉक्टर, लंग्स कैंसर अगर क्योर होता है तो इसके बाद फिर से वो आता है क्या? फिर से ये बीमारी उत्पन्न हो सकती है
0: देखिए,
1: क्या?
0: देखिए, देर
1: जी
0: इज नथिंग जीरो, ठीक
1: अच्छा
0: है ना।
1: अच्छा
0: तो कैसा होता है कि द रिस्क ऑफ रिलैप्स बोलते हैं इसको, द रिस्क ऑफ रिलैप्स डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ द डिसीज, पहली चीज, सेकंड
1: जी
0: थिंग इज द स्टेज ऑफ द डिसीज, थर्ड है कि ट्रीटमेंट क्या मिला था उसको, उसके बावजूद भी हमारे को फॉलोअप रखना बहुत जरूरी है। हायर द स्टेज द मोर इज द रिस्क ऑफ रिलैप्स, मतलब जैसे जैसे स्टेज बढ़ती है उसके
1: जी
0: बाद भी क्योर होते हैं तो देर आर लॉट ऑफ माइक्रोमेट्रास्टेसिस, मुझे जो बीमारी 0 से 1, 2, 3 स्टेज तक गई थी, तो जितने जैसे जैसे स्टेज बढ़ते वैसे वैसे उसके ब्लड में भी तो सेल्स गए थे, तो
1: अच्छा
0: स्टेज 1 की बीमारी समझो 3 महीने की है, समझो 3-4 महीने की थी, तो उसके सेल्स कितने होंगे, और वही स्टेज थी स्टेज 4 1 साल की बीमारी है तो उसके सेल्स कितने होंगे ब्लड में, तो दैट इज कॉल्ड माइक्रोमेटास्टेसिस। ये जो तो आपके बोन मैरो में, लीवर में, लंग्स में, या अलग सेलुलर लेवल पे जो R0 फेस में बोलते हैं, रेस्टिंग फेस में रहते हैं, तो दे आर द सेल्स विच कम बैक अगेन आफ्टर 2 इयर्स 3 इयर्स. तो ऐसे इसमें हमने देखा गया कि देर इज लॉट ऑफ मेंटेनेंस थेरेपीज जो पहले नहीं थी. EGFR पॉजिटिव पेशेंट्स में जनरली ऑस्टामेटिनिब, एजफ्टिनिब देते हैं, एल्कमेट एडजुवेंट ट्रीटमेंट देते हैं. इसका उद्देश्य वो है कि डिक्रीज करे रिलैप्स को, ताकि आगे

0: के आने की संभावना भी नहीं के बराबर या कम से कम हो जाए, या आता भी है तो जल्दी पकड़ में आए, इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग और फॉलोअप की जरूरत होती है ऐसे मरीजों में।
1: जी, डॉक्टर मानधनिया, हम लंग्स कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत बार जो पेशेंट्स में या उनके घर वालों के बारे में गलत फहमियाँ हो जाती हैं उनको, घर वालों की, तो ये क्या गलत फहमियाँ रहती हैं या क्या आपको मिथ्स क्या है इसमें?
0: मिथ जनरली जो हमने देखा है ना, मेडिकल मिथ थोड़ा ज़्यादा रहते हैं इसमें। जनरली क्या होता है कि हम जो मरीज देखते हैं लंग कैंसर के, हमारे पास तो काफ़ी एडवांस स्टेज में आते, पर इसकी जब पीछे की हिस्ट्री पे जाते हैं, हम 6 महीने पहले की, तो जनरली उसमें देखा जाता है कि कांस्टेंट कॉफ था, एक्सरे में एक निमोनेटिक पैच जैसा दिख रहा था। ऐसे मरीज में उनको एंटीबायोटिक बहुत मिलता है, कई बार अपर जोन में इन्फिल्ट्रेशन दिखता है तो टीबी की दवा मिल जाती है, छाती में पानी रहता है तो जनरली उसकी इवेल्युएशन भी नहीं होता है और उसको एंटी टीबी ड्रग्स मिल जाते हैं। तो ऐसे कई बार क्या होता है कि इसके कारण बहुत ही प्रेशियस टाइम वेस्ट होता है पेशेंट का, और इवेल्युएशन नहीं होने के कारण ट्रीटमेंट की दिशा भी गलत होने की संभावना रहती है, तो बीमारी बढ़ती है, पेशेंट की सिम्टम्स बढ़ते हैं, पेशेंट का प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाता है। जो बीमारी अर्ली स्टेज में, अर्ली स्टेज का मतलब है कि अर्ली समय में, नॉट स्टेज, ऑलरेडी स्टेज 4 हो चुका है, पर अगर उस समय ट्रीट करते तो उसकी कंडीशन इतनी अच्छी होती है कि दे रिस्पॉन्ड वेरी नाइसली। तो ऐसे वक्त में हमने देखा है कि जो जो ये जो मिथ्या है रिगार्डिंग दी ट्रीटमेंट कि भाई बायोप्सी नहीं करना, बायोप्सी करने से कैंसर फैल जाता है, और उस कारण से भी कई बार देखे कि हमने कि डायग्नोस्टिक डिले होता है या तो ट्रीटमेंट में डिले होता है, और लॉट ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द सिम्टम, जैसे जो वाक साहब ने पहले प्रश्न पूछा था कि निमोनिया और पानी। तो ऐसे वक्त में हम सलाह देते हैं कि अगर प्लूरल फ्लूड है तो उसको टैप करना चाहिए, पहले उसका कलर देखे, उसका हाई वॉल्यूम में टैप करे, मॉर्निंग में जमे जब तक टैप करना चाहिए ताकि उसका फ्रेश सैंपल भेज सके। टैपिंग फ्लूड में हिपेरिन डालना बहुत जरूरी है ताकि वो क्लॉट ना हो, उसको जब सैंपल के लिए भेजते तो टीबी के साथ में साइटोलॉजी सेल ब्लॉक भी करनी ही चाहिए, क्योंकि दोबारा ना मौका नहीं मिलेगा आपको करने का।
1: डॉक्टर, इस विषय पर हमें और भी कॉल्स हैं लेकिन हमारा समय अभी समाप्त हो रहा है, तो इसके बारे में हम अगली बार ज़रूर चर्चा करेंगे। डॉक्टर मानधनिया, आपने बहुत अच्छा मार्गदर्शन आज इस विषय पर किया है, आकाशवाणी की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार।
0: थैंक यू।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे थे कैनकेयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेट नागपुर, हेलो डॉक्टर, ये लाइव फोन इन कार्यक्रम, और आज का विषय था कर्क रोग, लंग्स कैंसर, और इस विषय पर हमें मार्गदर्शन किया तज्ञ डॉक्टर सुशील मानधनिया ने। इस कार्यक्रम के लिए हमारे तकनीकी सहायक थे दीपक भूते और ओम प्रकाश वरखड़े, तथा प्रस्तुतकर्ता थे अतुल साखरकर, और कार्यक्रम के प्रायोजक थे कैनकेयर फाउंडेशन एंड मानधनिया कैंसर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपुर। तो मिलते हैं अगले अनुभाग में, तब तक मैं पूर्वा कुलकर्णी डॉक्टर सुशील मानधनिया के साथ आपसे इजाजत चाहती हूँ। नमस्कार। श्रोते हो, आताच आपण कॅनकेअर फाउंडेशन आणि मानधनिया कॅन्सर हॉस्पिटल रामदासपेठ नागपूर, हॅलो डॉक्टर, हा कार्यक्रम ऐकलात। हा कार्यक्रम विविध भारती आणि आकाशवाणी केंद्र या दोन्ही केंद्रांवरून एकाच वेळी प्रसारित करण्यात आला। मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे। श्रोतेओ, 10:31 झालेली आहेत, ऐकूया प्रीत तुझी माझी या चित्रपटाचं गीत उषा मंगेशकर आणि रवींद्र साठे यांच्या स्वरात। कार्यक्रम आहे मराठी चित्रपट संगीत।

0: विजेच्या लखलखाटात आकाशात निना देणारी ती देववाणी, धरित्री ते आकाश हे अंतर जिंकणारी ती नभोवाणी, ज्ञान सूचना आणि मनोरंजनाची खाण ती नागपूर आकाशवाणी। ऐकत रहा मध्यम लहरी 512.8 मीटर्स म्हणजेच 585 किलो हर्ट्ज वर आकाशवाणी नागपूर केंद्र।
1: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज। आकाश्वानी, आकाश्वानी।

0: श्रोताओं, मैं आदेश जैन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम हिंदी साहित्य पत्रिका विभावरी में। विभावरी में हम चर्चा करते हैं हिंदी साहित्य जगत की और बात करते हैं सामाजिक विषयों पर। साथ ही हम आपसे रूबरू करवाते हैं उन साहित्यकारों को जो साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से हिंदी साहित्य को समृद्ध कर रहे हैं। श्रोताओं, साहित्य की विभिन्न विधाओं में से एक है कहानी। कहानी अक्सर किसी विचित्र घटना का वर्णन करती है जिसमें किसी अनोखी, अद्भुत या अलौकिक चीज पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। कहानी किसी घटना, पात्र या कल्पना का ऐसा विवरण है जिसका एक निश्चित उद्देश्य, आरंभ, मध्य और अंत होता है। कहानी पाठक के मन में जिज्ञासा और मनोरंजन उत्पन्न करने के साथ साथ एक संदेश भी देती है। तो आइए कथा सागर में सुनते हैं कहानी जिसे सुना रही हैं ममता मोदी।
1: नमस्कार साथियों, मैं ममता मोदी आज आपके सामने एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर आपको आनंद तो जरूर आएगा और ऐसी रहस्यपूर्ण कहानी आपको उत्सुकता को बनाए रखेगी। कहानी का शीर्षक है एक अजनबी कमरा। कहते हैं ना साथियों, कुछ घरों की दीवारों की खामोशी बोलती है। वो खामोशी इतनी गहरी है कि जैसे वो कुछ कहना चाहती है या फिर कुछ याद दिलाना चाहती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, एक घर की, जिसमें एक कमरा है जो पिछले कई सालों से बंद पड़ा था। उस कमरे के आसपास भी कोई आता जाता नहीं था। हमारी कहानी का नायक है सुमित, एक सीधा साधा व्यक्तित्व, सरल स्वभाव, पर अपने सपनों को पूरा करने वाला, यानी अपने सपनों को पूरा करके अपना लक्ष्य ढूंढने वाला, मगर अनजाने में किसी और की खोई हुई पहचान को ढूंढ निकालता है। सुमित अपने गांव से पहली बार बाहर निकलकर शहर

की ओर आया था अपनी नौकरी के सिलसिले में। उसे एक लाइब्रेरी में नौकरी लगी थी। लाइब्रेरी की बिल्डिंग तो बहुत पुरानी वीरान सी थी। नौकरी तो करनी ही थी, पर अब सवाल ये था कि रहे कहाँ। कोई जान पहचान का भी नहीं था कि उसके घर कुछ दिन बिताए। एक सस्ते से मकान की तलाश शुरू हो गई। यहां वहां भटकता रहा, कहीं किराया ज्यादा था तो कहीं मकान अकेले आदमी को रहने के लिए इजाजत नहीं देते थे। कोई 6 महीने का एडवांस मांग रहा था। बेचारा बहुत परेशान हो गया, पर हिम्मत नहीं टूटने दी, कोशिश जारी रखी। कहावत है ना दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आखिरकार एक पुराने से मोहल्ले में उसे एक मकान मिल ही गया। कहते हैं ना, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, बस हिम्मत, विश्वास और निष्ठा होनी चाहिए। मकान बहुत ही पुराना था। आसपास झाड़ियां, टूटे फर्श, धूल, मिट्टी, मकड़ी के जाले, पर क्या करें, सफाई करी और उसे रहने के लायक बना दिया। मकान मालिक थे मिश्रा जी, जो बहुत ही बुजुर्ग और एक सख्त शालीन मिजाज के थे। उन्होंने कहा, कमरा ठीक है क्या, पर एक बात याद रखना, ऊपर वाले कमरे की तरफ मत जाना, जो कि पिछले हिस्से में है, उसे मत खोलना, बंद ही रहने देना। सुमित ने हामी भरी और हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उस वक्त उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने सोचा, शायद स्टोर रूम होगा, जाने दो, अपने काम से काम रखूंगा, मुझे क्या। कुछ दिन बीत गए, सुमित लाइब्रेरी जाने लगा और उसका काम चलते रहा। उसे नया शहर बड़ा अजीब रोचक लगा। जहां वो रात में सोता तो कभी कभी ऊपर के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आती थी। सुमित ने सोचा कि शायद चूहा होगा, पर हर दिन ऐसा ही होने लगा तो उसे डर लगने लग गया। एक रात को उसने किसी के गुनगुनाने की धुन सी सुनी, वो बहुत डर गया। सुमित का दिल तो जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे तैसे रात बीती, सुबह हुई और सुमित सबसे पहले मिश्रा जी के पास दौड़ा दौड़ा पहुंचा और उन्हें अपनी आप बीती बताई, जो वो इतने दिनों से झेल रहा था। सुमित ने पूछा, ऊपर कोई रहता है क्या। मिश्रा जी ने बताया कि कुछ सालों पहले यहाँ एक अकेली लड़की रहती थी, अब उसका कोई भी अता पता नहीं है, ना जाने कहाँ गई। सुमित ने पूछा, पर वो कमरा क्या यूं ही खाली पड़ा रहता है। सुमित डरा हुआ तो था, जाहिर सी बात है ना दोस्तों, अगर हम उसकी जगह पर होते तो हम भी घबरा जाते, है ना। सुमित की मजबूरी थी इसलिए उसे वहीं रहना पड़ा, पर वो हमेशा डरा, सहमा, घबराया सा रहने लगा। दिन बीतते गए। एक दिन मिश्रा जी को किसी जरूरी काम से 5-6 दिनों के लिए गांव जाना पड़ा। ऐसे में सुमित की हालत दयनीय थी, पर मन को मार के चुपचाप रहा उस वीरान से घर में एक कमरे में अकेला ही। रात हुई, सुमित बहुत घबराया, फिर वही आवाजें आने लगी, पर हिम्मत जुटाकर सुमित ने चाबियों का गुच्छा उठाया और बढ़ चला उस खुफिया कमरे की ओर। कब तक डर कर रहेगा, सोचकर ताले में हर चाबी को लगाकर देखने लगा। काफी समय बीत गया, आखिरकार एक चाबी लग ही गई। मेहनत रंग लाई, उस रहस्यमयी कमरे को भगवान का नाम लेकर दरवाजा खोलने लगा। दरवाजे की आवाज भी अजीब सी थी और दरवाजा खुलते ही अंदर से धीरे धीरे सारे राज खुलने लगे। गीली लकड़ी की महक, धूल मिट्टी, जाले, एक झूला जो हवा के झोंके से हिल रहा था और अजीब आवाज कर रहा था। सुमित ने मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा और आगे बढ़ा। एक कैनवस स्टैंड देखा जो एक कोने पे पड़ा था, और कई कैनवस और एक अलमारी जो पुरानी सी थी, धूल खाती हुई, कुछ फाइल्स और भी पड़ी हुई थी, एक डायरी, और दीवारों पर अजीब से चित्र थे, कुछ अधूरे रंग भरे, किसी पर धुंधले चेहरे। सुमित ने डायरी उठाई और पढ़ने लगा। डायरी में लिखा था, कला सिर्फ रंग नहीं होता, ये तो भाषा है जिसे कोई बोल नहीं पाता। मुझे सबने कहा डॉक्टर बनो, टीचर बनो, पर किसी ने ये नहीं कहा कि अन्वी तुम वो बनो जो तुम चाहती हो।

0: अन्वी यानी कि हमारी कहानी की नायिका। ये कमरा अब मेरी पूरी दुनिया है, बाहर की दुनिया में मेरे लिए कोई जगह नहीं। सुमित एक एक पन्ना पलटता और पढ़ते रहा, मानो अन्वी की सारी दुनिया वो अपनी आंखों से सामने देख रहा हो। एक लड़की जिसकी कला को कोई समझ नहीं पाया, और इसी दुख ने अन्वी को अपने आप से उस कमरे में कैद कर लिया था। सुमित को कमरे में और भी कुछ सारे कैनवस मिले जो कोने में पड़े हुए थे। सुमित ने कैनवस को उठाया, उन्हें साफ किया तो चित्र साफ साफ दिखने लगे कि असल में बनाया क्या गया था। पर चित्र में गुस्सा, तड़प, नाराजगी और एक चुप सी चीख। पर उनमें से एक पेंटिंग ऐसी थी जिसमें सबसे हटकर कुछ बना हुआ था। उसमें था कि एक लड़की खुले आसमान में उड़ रही है, ना पंख है और न ही कुछ उड़ने का साधन या जरिया। सुमित ने उस पेंटिंग को उठाया और उसका फोटो खींचा और सोशल मीडिया पर डाल दिया। एक हफ्ते में वो फोटो वायरल हो गई। सबको इतनी पसंद आई कि सब पूछने लगे कि कौन है ये कलाकार। आर्ट गैलरी, कॉलेजेस, न्यूज चैनल्स, हर जगह अन्वी के चित्रों की चर्चा होने लगी। सुमित ने डायरी के आखिरी पन्ने को ध्यान से पढ़ा। उसमें एक गांव का पता यानी एड्रेस था। सुमित ने तुरंत उस गांव के स्कूल में फोन किया तो पता चला कि वहां एक टीचर है जो आर्ट सब्जेक्ट पढ़ाती हैं। उनका नाम है अन्वी। तो सुमित ने राहत की सांस ली। एक दिन अचानक सुमित के घर एक महिला आई, साधारण सी, साधारण कपड़ों में। उसकी आंखों में चमक और आंसू दोनों ही साथ साथ थे। वो कमरे की ओर बढ़ी और देखा कि सब कुछ वैसा ही पड़ा है। पुरानी यादें तो मानो ताजा हो गई। अन्वी धीरे से झूले पर बैठ गई और सुमित का हाथ पकड़कर सुमित से कहा, मैंने तो सोचा था मेरी कला मर गई, लेकिन तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया, मुझमें नई उमंग भर दी। सुमित मुस्कुराने लगा और कहने लगा, हर बंद दरवाजा भूत प्रेतों का घर नहीं होता, कभी कभी इसके पीछे किसी का सपना भी छुपा होता है जो बस एक आवाज देना चाहता है। हम में से हर कोई कभी ना कभी अन्वी बन जाते हैं जो दुनिया की बातें सुनने से अपने ही सपनों का गला घोंट देते हैं और सपनों की आवाज को भूल जाते हैं। अन्वी ने अपने सपनों को पंख लगाकर एक ऊंची उड़ान भरी कि उस पेंटिंग में थी। सुमित को राहत मिली और अन्वी को सपना साकार करने का मौका। पर याद रखिए, कला सिर्फ एक शौक नहीं, वो आत्मा की पुकार है। और कोई सुमित किसी अन्वी को फिर उसके कमरे से बाहर लाने जाए तो उसकी आवाज जरूर सुनिए, क्योंकि हर अजनबी कमरा किसी का सच होता है। तो दोस्तों, अपनी कला को एक ऊंची उड़ान दीजिए और उसके पंखों को मत काटिए। इसी सीख के साथ मेरी कहानी कहती है कि इससे सबक लें और अपने सपनों को पूरा करें, अपनी कला को दुनिया के सामने लाएं, इसे अंधेरे में लुप्त मत होने दें। समय जरूर लगेगा पर जीत जरूर हासिल होगी। साथियों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की कहानी आपके दिलों पर छाप जरूर छोड़ चुकी होगी। दोस्तों, ममता आपसे विदा लेती है इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे एक रोचक रोमांचित कहानी के साथ, जल्द ही। नमस्कार
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कहानी एक अजनबी कमरा, जिसे प्रस्तुत कर रही थी ममता मोदी। साहित्य की एक और विधा है गजल। हिंदी गजल मूलतः अरबी काव्य का रूप है, जिसे फारसी से होते हुए हिंदी साहित्य में अपनाया गया है। गजल प्रेम, विरह और सामाजिक विषयों पर लिखे गए स्वतंत्र शेरों का संग्रह है। हिंदी में गजल लेखन की शुरुआत मुख्य रूप से स्वतंत्रता के बाद हुई, जिसे नई ऊंचाइयों में पहुंचाने का श्रेय दुष्यंत कुमार को जाता है। गजल कुछ निश्चित नियमों और तकनीकी शब्दों पर आधारित होती है। जैसे शेर, गजल की हर इकाई को शेर कहा जाता है। दूसरा होता है मिसरा, शेर की एक पंक्ति को मिसरा कहते हैं। उसी तरह से होता है काफिया।

0: तीरों के अंत में आने वाले समान ध्वनि वाले शब्द को काफिया कहते हैं। उसके बाद गजल में होता है रदीफ। काफिया के ठीक बाद आने वाले वे शब्द या वाक्यांश जो हर शेर में समान होते हैं। मतला, गजल का पहला शेर यानी मतला कहलाता है। इसके दोनों मिसरों में काफिया और रदीफ का मेल होता है। और उसी तरह से गजल का अंतिम शेर यानी मक्ता, जिसमें शायर अपना उपनाम इस्तेमाल करता है। उसी तरह से गजल का छंद या वजन, जो लय और मात्राओं को नियंत्रित करता है, उसे बहर कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं अब्दुल अमानी कुरैशी से उनकी स्वरचित गजलें।
1: नमस्कार श्रोताओं, मैं अब्दुल अमानी कुरैशी, मैं अपनी स्वरचित रचना यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहली रचना का शीर्षक है आँखें। ये माना बहुत काम करती हैं आँखें, ये माना बहुत काम करती हैं आँखें, मगर अपने साए से डरती हैं आँखें, मगर अपने साए से डरती है आँखें। तेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी है, तेरी जिंदगी से मेरी जिंदगी है, तुझे देखती ही सवरती हैं आंखें, तुझे देखते ही सवरती है आंखें। ये माना बहुत काम करती हैं आंखें, मगर अपने साए से डरती है आंखें। कि यहाँ एक मंजर नहीं देखने को, यहाँ एक मंजर नहीं देखने को, हंसी वादियों से गुजरती हैं आंखें, हंसी वादियों से गुजरती हैं आंखें। ये माना बहुत काम करती हैं आंखें, मगर अपने साए से डरती हैं आंखें। एक शेर और भी है इसमें कि मैं फूलों को इस वास्ते चूमता हूँ, मैं फूलों को इस वास्ते चूमता हूँ, हंसी मंजरों में निखरती हैं आंखें, हंसी मंजरों में निखरती हैं आंखें। ये माना बहुत काम करती हैं आंखें, मगर अपने साए से डरती हैं आंखें। इसका मकता देखिए कि छुपाओ न यूं हाल दिल तुम अमानी, छुपाओ न यूं हाल दिल तुम अमानी, कई हसरतों से गुजरती हैं आंखें, कई हसरतों से गुजरती है आंखें। ये माना बहुत काम करती हैं आंखें, मगर अपने साए से डरती है आंखें। इसी जमीन में एक गजल और कही है मैंने कि हंसी नरगिसी सबको भाती हैं आंखें, हंसी नरगिसी सबको भाती है आंखें, कहीं रंग अपना जमाती हैं आंखें, हंसी नरगिसी सबको भाती हैं आंखें, कहीं रंग अपना जमाती है आंखें। जलाए गए कितने इंसान जिंदा, ये मंजर बमंजर रुलाती हैं आंखें, ये मंजर बमंजर रुलाती हैं आंखें, हंसी नरगिसी सबको भाती हैं आंखें, कहीं रंग अपना जमाती हैं आंखें। कभी प्यार हमसे कभी बेवफाई, कभी प्यार हमसे कभी बेवफाई, तमाशा भी क्या क्या दिखाती है आंखें, तमाशा भी क्या क्या दिखाती है आंखें, हंसी नरगिसी सबको भाती हैं आंखें, कहीं रंग अपना जमाती हैं आंखें। ये पैगाम बादे सबा उनको देना, ये पैगाम बादे सबा उनको देना, जुदाई में आंसू बहाती है आंखें, जुदाई में आंसू बहाती है आंखें, कहीं रंग अपना जमाती हैं आंखें। एक अंतिम शेर देखिए इस गजल का कि खुदा जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं, खुदा जाने क्या क्या कहे जा रहे हैं, खफा कोई है ये बताती हैं आंखें, खफा कोई है ये बताती हैं आंखें। और इसका मकता देखिए कि जमाना अगर छीन ले हसरतें तक, जमाना अगर छीन ले हसरतें तक, सुना है कि अक्सर रुलाती है आंखें, सुना है कि अक्सर रुलाती है आंखें, हंसी नरगिसी सबको भाती हैं आंखें, कहीं रंग अपना जमाती है आंखें। एक गजल समाप्त फरमाइए।
2: भीड़ में इतना रास्ता बनाना,

फिर अपनी मंजिल पे जाना कितना मुश्किल है। एक शेर और समाप्त फरमाइए।

0: कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। मेरी अगली रचना समाप्त कीजिए।
1: करे मुफलिस सवाल कागज पर, करे

बड़ी शिद्दत से पढ़ रहा है वो, बड़ी शिद्दत से पढ़ रहा है वो, बड़ी शिद्दत

पर। आखिरी शेर देखिए, आज शेरों की शक्ल में रख दी, आज शेरों की शक्ल में रख दी मैंने अपनी मिसाल कागज पर, मैंने अपनी मिसाल कागज पर, करे मुफलिस सवाल कागज पर।

वो तुम्हारा गुलाम हो जाए, वो तुम्हारा गुलाम हो जाए, हमसे बेहतर कलाम हो जाए, कुछ तुम्हारा भी नाम हो जाए। आखिरी शेर देखिए कि

इससे पहले के शाम हो जाए, इससे पहले के शाम हो जाए, हमसे बेहतर कलाम हो जाए, कुछ तुम्हारा भी नाम हो जाए। एक आखिरी शेर है, समाप्त फरमाइए। कि उनके दर पे अमानी उम्र मेरी, उनके दर

0: हमसे बेहतर कलाम हो जाए, कुछ तुम्हारा भी नाम हो जाए। धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे अब्दुल अमानी कुरैशी से उनकी स्वरचित गजलें। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे सुरेंद्र पाटिल। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का, तो आज्ञा दीजिए आपके अपने रेडियो दोस्त आदेश जैन को। नमस्कार।

0: सब दंग।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जिसे हमें भेजा है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज जी ने। लिखते हैं,
2: पेड़ धरती के फेफड़े हैं, वे हवा को शुद्ध करते हैं और हमें नया जीवन देते हैं।
3: धन्यवाद आप सबको इस सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। उमंग कार्यक्रम में श्रोता संवाद के मासिक संस्करण का बेसब्री से इंतजार करते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है।
3: आप आगे लिखते हैं, कार्यक्रम में सीआईईटी एनसीईआरटी के मीडिया निर्माण प्रभाग की अध्यक्षा प्रोफेसर भारती कौशिक और विमलेश जी की बातचीत प्रशंसा योग्य लगी। कार्यक्रम में समावेशी शिक्षा पर सुनाई गई विस्तार पूर्वक जानकारी बेहद पसंद आई। ये जानकारी रिकॉर्ड करके परिवार के छोटे बड़े सभी सदस्यों को भी हमने सुनवाई
2: जी।
3: इस कार्यक्रम की सभी ने तारीफ की। समावेशी शिक्षा पर विस्तार पूर्वक जानकारी सुनवाने के लिए आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है
2: गांव ढाणी कुतुबपुर तहसील हांसी जिला हिसार हरियाणा से रामधारी गुर्जर, अवनी गुर्जर, रियांशी गुर्जर, ओजस गुर्जर, गुरदीप गुर्जर, प्यारी बिटिया मीठी, अनाया गुर्जर और बेबी किरत ने। वो लिखते हैं,
3: कार्यक्रम उमंग के प्रस्तुतकर्ता विमलेश जी और अजीत जी को सप्रेम नमस्कार। आपका ये कार्यक्रम विविध जानकारी और मनोरंजन के साथ साथ शिक्षा भाषाई विविधता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। इस कार्यक्रम का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। ऐसी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का। बड़ा खूबसूरत लिखा है,
2: जून महीने के शुरुआती समय में उमंग प्रसारण का श्रोता संवाद कार्यक्रम एक नए अंदाज में प्रस्तुत किया गया जिसने इस कार्यक्रम को अर्थपूर्ण बना दिया और एक प्रकार की नवीनता का संचार किया। सभी श्रोताओं को ये नवीन संस्करण अवश्य पसंद आया होगा।
3: आप आगे लिखते हैं, इस कार्यक्रम की परिचर्चा में आपने समावेशी शिक्षा जैसे अत्यंत

प्रासंगिक असमकालीन विषय की ओर सभी श्रोता बंधुओं का ध्यान आकर्षित किया। प्रोफेसर भारती जी ने बड़ी सरलता से और विस्तार पूर्वक समावेशी शिक्षा का परिचय प्रस्तुत किया, अर्थ समझाया तथा समावेशी शिक्षा और समतामूलक शिक्षा के बीच का अर्थ स्पष्ट किया। शिक्षा जगत में इन दिनों समावेशी शिक्षा की खूब चर्चा होती रहती है। उमंग कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख

0: में भी इसका विस्तार पूर्वक उल्लेख किया गया। ये जानकर और कार्यक्रम सुनकर बहुत ही सकारात्मकता का अनुभव हुआ। आगे आप लिखते हैं,
1: श्रोता संवाद का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। प्रोफेसर राजेंद्र पाल जी के साथ जितने भी अंक प्रसारित किए गए हैं, उन सभी ने श्रोताओं के मस्तिष्क पटल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। श्रोता संवाद हमारे और आपके बीच सक्रिय संवाद का एक विशेष सेतु है। आशा है कि उमंग प्रसारण में नवाचार, रचनात्मकता, आपसी संबंध और संवाद का ये क्रम चलता रहेगा।
0: आपको बहुत बहुत धन्यवाद योगेश ठाकुर जी, आपने बड़ी खूबसूरती से श्रोता संवाद कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी है, आपका धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है गोनियाना मंडी भटिंडा पंजाब से गुरप्रीत सिंह जस्सल जी का, लिखते हैं,
1: समावेशी शिक्षा पर आधारित कार्यक्रम सुना, बहुत अच्छा लगा। हमारी जानकारी भी बढ़ी और मैं ऐसे शिक्षा प्रद कार्यक्रम जरूर सुनता हूँ। आकाशवाणी भटिंडा का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने ये प्रसारण हमारे लिए प्रस्तुत किया है।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ऊपरकोट बुलंदशहर से निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, अबान और आवासी परिवार के सभी सदस्य और केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास, धन्यवाद श्रोताओं संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से बने रहिए आपके प्रिय शैक्षिक कार्यक्रम उमंग के साथ। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो हमारा पहला प्रश्न था, सूर्य एक गैस का गोला है जो हाइड्रोजन और हीलियम गैस से बना है, ये दोनों गैसें ठंडी होती हैं, तो फिर सूर्य से गर्मी कैसे पैदा होती है?
1: इसका उत्तर है साथियों, हाइड्रोजन और हीलियम गैसें ठंडी होती हैं, लेकिन जब उनके बीच नाभिकीय संलयन या न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो गर्मी पैदा होती है।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, भीम बैठका की गुफाओं की खोज किस पुरातत्वविद ने की थी?
1: इसका उत्तर है साथियों, भीम बैठका की गुफाओं की खोज प्रसिद्ध पुरातत्वविद विष्णु वाकणकर जी ने की थी, जिसके लिए उन्हें नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था।
0: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न, हमारा प्रश्न था, कुटुम्बसर की गुफाओं में फुसफुसाकर बोलने पर भी आवाजें साफ साफ क्यों सुनाई देती हैं?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, इन गुफाओं की बनावट ऐसी होती है कि गुफाओं की दीवारें और छत ध्वनि तरंगों को परावर्तित या रिफ्लेक्ट करती हैं। गुफाएं गहरी हैं, इसलिए वहां बाहर का शोर भी लगभग नहीं के बराबर होता है, इसलिए वहां धीमी आवाज भी स्पष्ट सुनाई देती है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न, हमने आपसे पूछा था, बोर्रा गुफाओं की खोज किसने और कैसे की?
1: बोर्रा गुफाओं की खोज ब्रिटिश भूवैज्ञानिक विलियम किंग जॉर्ज द्वारा की गई थी।
0: जी, और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न, हमारा अंतिम प्रश्न था, सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों?
1: सिजू गुफाओं में एक पैसेज को टूथ पैसेज कहते हैं क्योंकि वहां चट्टानों की बनावट मानव दांतों की श्रृंखला से मिलती जुलती है।
0: तो साथियों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, और अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है?
0: 8800440559 है हमारा IBRS नंबर और audio@cieet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। साथ ही साथ CIET NCERT को इंस्टा, एक्स, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी फॉलो करना ना भूलिए। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो श्रोताओ, हमारा पहला कार्यक्रम है, बुधनी गई है जंगल।
1: ये कार्यक्रम एक जनजातीय लोक कथा पर आधारित है जिसके द्वारा पेड़ पौधों के संरक्षण और पर्यावरण की स्वच्छता का संदेश दिया गया है।

0: बहुत थक गया आज तो। बुधनी, अरे ओ बुधनी,
1: आई रे आई। आ गया बुधवा?
0: हाँ।
1: ले आया लकड़ी? आई इतनी सी चुब्बा कहाँ रह गया? अम्मा अम्मा अम्मा देख कितने जामुन लाया हूँ जंगल से। इतना बड़ा पेड़ ढूंढा है मैंने आज जामुन का। कल से रोज जाऊंगा बापू के साथ जंगल, वहाँ बहुत सारे पेड़ हैं अम्मा। हाँ। अरे चुप भी कर, क्या करूँ इतने सारे पेड़ों का। तेरा बापू तो एक भी पेड़ ना काट सकता। रोज यही जरी मरी सी सूखी टहनियाँ तोड़ लाता है बस।
0: फिर वही बात, अरे मैं क्यों काटूँ पेड़ है? जब इतनी सारी लकड़ियों की टहनियाँ ऐसी मिल जाती है, काम तो चल जाता है ना।
1: काम चल जाता है, काम चल जाता है। हाँ नहीं तो, अरे ढेर लकड़ी लाओगे तो इतने सारे पैसे मिलेंगे बेचने से।
0: अच्छा,
1: कुछ कहना करिया, कुछ आड़े पकत के लिए कुछ समझता तो है ना। हाँ।
0: अरे भोली, जब तक जंगल है तब तक आड़ा बखत आएगा ही नहीं। ना लकड़ी की कमी, ना फलकंद की, बीमारी पड़ी तो जड़ी बूटी भी। रही गहना गरिया की बात तो

0: विनी, ये जो तू जंगली फूल लगा लेती है ना कभी कभी, उसके सामने सच कहूं सारे गहना गरिया मात।
1: अब ना बहलती मैं तुम्हारी बातों से,
0: हैं?
1: कह देती हूँ हाँ, या तो कल एक बड़ा सा पेड़ काट कर लाओ, नहीं तो मेरा मरा मुंह देखो।
0: अरे
1: हाँ
0: अरे रोने लगी। अरे सुन
1: हाँ
0: तो, अच्छा अच्छा सुन, आप चुप भी हो जा बुधनी, काट लाऊंगा एक पेड़ बड़ा सा। है तो ये पाप ही, हमारा ओझा भी यही कहता है कि पूरे विधि विधान के बाद ही काटो एक पेड़ और फिर लगाओ 10 पेड़, और पुरखों की भी यही रीत है। मगर तू कलह मत कर, मैं काटूंगा पेड़।
2: बापू दुख मत कर, कल हम पेड़ काटेंगे ही नहीं, कोई बहाना बना देंगे। ठीक
0: हाँ यही ठीक रहेगा। अरे तू तो बड़ा सयाना है रे चुब्बा।
1: क्या घुल मिलकर बातें कर रहे हो दोनों?
0: कुछ नहीं,
1: जरूर मुझे बुद्ध बनाने की बात होगी।
0: नहीं नहीं नहीं
1: अब तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ, अपने सामने कटवाऊंगी पेड़।
2: अब
1: तुम लोगों का कोई भरोसा है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं तू क्या करेगी जंगल में जाकर, हम काट लाएंगे ना एक अच्छा सा पेड़।
2: हाँ माँ, वहाँ ऐसे ऐसे भयानक जानवर होते हैं, ऐसे ऐसे जानवर होते हैं अम्मा।
1: अरे चुप, जैसे मैं तो कभी जंगल गई ही नहीं। मैंने तो सोच लिया है, मैं जंगल जाऊंगी ही। सुबह जल्दी उठकर सारी तैयारी करनी है, दिन भर का खाना बनाना है। अब चलो खाना खाकर जल्दी सो जाओ।

0: चुबा चुबा क्या हुआ बेटा?
1: डर मत बच्चे, मैं यही हूँ तेरे पास।
0: अरे कोई डरावना सपना देखा क्या? क्या सपना देखा तूने?
2: अम्मा मुझे डर लग रहा है अम्मा।
1: कोई डरावना सपना देखा होगा बच्चे। अरे क्या देखा तूने?
2: अम्मा अम्मा मैंने देखा कि हम जंगल में पेड़ काट रहे हैं और अम्मा पेड़ रोने लगा, मुझे मत काटो मत मारो, मुझे दर्द होता है, मेरी लकड़ी ले लो, पत्ते ले लो, फूल ले लो, फल ले लो, पर मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा मीत हूँ माँ। माँ उसने ये कहा, उसने कहा अम्मा मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है अम्मा, और वो रोने लगा। अम्मा अम्मा जोर जोर से रोया, मगर हमने उसे काट ही दिया। वो चिल्लाया अम्मा, मैं भी चिल्लाया।
0: चुप्पा चुप्पा
1: सोचा सोचा बेटे सोचा, डर मत। अरे वो तो सपना था। सोचा सोचा बेटा, मैं तेरे पास ही तो लेटी हुई हूँ यहाँ। सोचा बेटे सोचा सोचा, शाबाश राजा बेटा है ना, चुप्पा तो सोएगा। सोचा सो गया, इसने तो मुझे डरा ही दिया। अरे कैसे कैसे सपने देखता है ये।
0: तो फिर कल पेड़ काटने नहीं जाना ना?
1: क्यों नहीं, बिल्कुल जाना है। जा जा सो जा। अरे वो तो सपना था, उससे क्या होता है। अरे सो जा, सुबह जल्दी उठना है।

0: चुब्बा, अरे ओ चुब्बा, अरे उठ बेटा, पुतवा उठो ना, भोर हो गई, मैं तैयारी करती हूँ चलने की।
1: अरे तो जाना ही पड़ेगा, तू मानेगी नहीं?
0: ना, मैं तो ना मानू। चल
1: चल, तेरी यही हट है तो चल, चल चुब्बा।
0: अरे कुल्हाड़ी तो ले लो, पेड़ क्या हाथों से काटोगे?
1: अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गया था, आदत नहीं है ना।
0: आदत नहीं है, ये नियत ना है वो। चल चुब्बा, वो रस्सी उठा, लट्ठों को बांधना भी तो होगा ना।
2: अच्छा अम्मा।
0: अरे अब चलो भी।
1: चलो
2: चलो, चलो।

0: मुंह क्यों लटका रखा है बाप बेटे ने? पेड़ की लकड़ी बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे तुम्हारे लिए भी तो चीजें आएंगी अच्छी अच्छी।
1: अम्मा मुझे नहीं चाहिए अच्छी चीजें। हाँ
2: मुझे भी नहीं।
0: ठीक है तुम लोग मत लेना, सारी अच्छी अच्छी चीजें मैं अपने लिए लाऊंगी बस।

0: मैं तो गहना लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, गहना गरिया लूंगी, मैं तो साड़ी लूंगी, बढ़िया खाना खाऊंगी, मैं तो साड़ी लूंगी।
1: अरे बाप रे, तेरी इस जंगल में शेर भी है क्या?
2: अरे शेर तो नहीं है, कोई बघेरा उघेरा होगा। अरे डर मत, ये कुल्हाड़ी है ना, वैसे भी इस तरफ आदमियों का आना जाना लगा रहता है, इससे जानवर इधर नहीं आते।
1: फिर भी
3: अम्मा तू भी चले वापस?
1: ना वापस तो फिर भी नहीं जाएंगे हम। हाँ
3: अम्मा क्या सोच रही है?
1: यही कि कौन सा पेड़ काटना ठीक रहेगा। क्यों बुधवा, ये जामुन कैसा रहेगा रे?
2: ये जामुन?
1: हाँ
2: चलो इसी को काट देते हैं।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, इसे नहीं, ये तो फलों से लदा है।
2: हाँ।
3: हर साल फल देता है, इसे मत काटो।
1: हाँ ये बात तो ठीक है, जामुन कहाँ से खाऊंगी? तो फिर फिर उस साल के पेड़ को काटते हैं चलो।
2: अरे रे क्या बात करती हो, वो तो अभी पूरा बढ़ा भी नहीं है, ये तो वैसे हुआ कि जैसे किसी को छुटपन में ही मरना पड़े।
1: अरे बात तो तुम्हारी सच है।
3: तो अम्मा ऐसा करते हैं, वो जो देवदार के बहुत सारे पेड़ है ना, उनमें से एक को काट देते हैं।
1: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं, कितने सुंदर हैं ये पेड़, अरे उन्हें रहने दो। ये रोन का पेड़ कैसा रहेगा बुधवा?
2: ये
1: है भी काफी पुराना, फल भी नहीं है इस पर तो।
2: फूल तो हैं, फल भी आएंगे, अरे हजारों पक्षियों की भूख मिटाएंगे। नहीं नहीं नहीं नहीं, ठीक नहीं रहेगा इसे काटना। चलो ठीक है, काटना ही है तो ये नीम का पेड़ काट देते हैं।
1: अरे पागल हुआ है, ये नीम का पेड़ तो दवा दारू के काम आता है, कोई बीमारी नहीं जिसका इसके पास इलाज ना हो। हाँ
2: अच्छा, तब तो अरार का पेड़ भी छोड़ना पड़ेगा है?
1: क्यों?
2: इसका भी नीम वाला हाल है, बल्कि ये तो सुना है सबकी किस्मत भी जानता है, इसे कौन काटे।
3: चलो आगे देखते हैं, कोई ना कोई बेकार पेड़ तो मिल ही जाएगा, ऐसा क्या है।
1: हाँ हाँ चलो चलो, आगे चलकर देखते हैं।
2: ये देखो ये
1: पेड़ देख लो।
3: अम्मा अम्मा वो देखो, ओक का पेड़, और वहीं बबूल भी है। चलो अम्मा काटे
1: चलो, इधर से निकल कर आओ।
3: अच्छा
1: आई, क्या हुआ चुप्पा?
2: क्या हुआ
3: अम्मा? अम्मा कांटा चुप गया। आई
1: अरे दिखा दो
3: अम्मा, लगता है पेड़ कह रहे हैं हमें मत काटो, हमें मत काटो। बापू इन्हें मत काटना, देखो ये रो रहे हैं।
2: ठीक है नहीं काटेंगे। हाँ।
3: देखा अम्मा कैसे लहलाने लगे, जान बचने से खुश हो रहे होंगे है ना?
2: हाँ बेटा, ये देखो ये चीड़, देवदार, ओक, खजूर और ताड़।
1: हाँ।
2: ये तो है ही सदाबहार, इन्हें काटने से क्या फायदा?
1: अरे नुकसान भी क्या है?
2: बहुत नुकसान है, हमारे पुरखे कहते थे इन्हीं की बदौलत हवा पानी साफ रहता है, बरखा होती है, बाढ़ रुकती है। सोचो हमारी तरह सभी लोग चल दें पेड़ काटने तो कितना नुकसान हो जाए।
1: रहने दो अपनी बातें, कोई और पेड़ ढूंढो। ये कौन सा पेड़ है, ना फूल ना फल?
2: क्या पता, मुझे सबके नाम थोड़े मालूम है, मगर मैं तो इसे नहीं काटूंगा।
1: क्यों?
3: देखो ना माँ, ये पेड़ हजारों लाखों कीड़ों का घर है, उन्हें दूध पिला रहा है।
1: और वो वाला, उसमें तो ना कीड़े दूध पी रहे हैं, ना फल है, ना फूल है, कुछ भी नहीं है उसमें, और ना ही उससे कोई लाभ है, उसे तो काटो कम से कम।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं अम्मा, उसे छोड़ दो। देखो अम्मा, इस पेड़ की घनी पत्तियों में सैकड़ों पंछियों का घोंसला है।
2: हाँ।
3: पेड़ कटा तो वो सब बेघर हो जाएंगे। सोचो माँ, अगर हमारा कोई घर तोड़ दे तो हमें कैसा लगेगा?
2: हाँ बिल्कुल।
1: सचमुच इस पर तो कोयल भी रह रही है, बुधवा रहने दे इसको भी।
2: अच्छा।
1: मुझे कोयल का गाना बहुत अच्छा लगता है, तू रहने दे इस पेड़ को तो।
2: ठीक है। अरे सुन, कोयल खुश होकर तुझे धन्यवाद दे रही है बुधनी।
3: अम्मा जिन जिन पेड़ों को तुमने बचा लिया वो सभी तुम्हें दुआएं दे रहे होंगे।
1: मुझे बनाओ मत, मैंने अभी बदला नहीं है अपना इरादा, चलो ढूंढो काटने लायक पेड़। हाँ। लो, इसमें हंसने की क्या बात है, चलो।

0: अरे अब कहाँ से ढूंढे, जंगल के सारे पेड़ों को तो तूने बख्श दिया, अब किसे काटे?
1: क्या सारे पेड़ों को बख्श दिया?
0: और क्या?
1: ना जी ना, अभी तो हजारों पेड़ होंगे इस जंगल में।
0: हाँ है तो सही, मगर वो सब भी इन्हीं के भाई बंद हैं, जो बात इनके साथ वही उनके साथ।
1: जीवा जीवा जी, अब तो पेड़ नहीं कटेगा, नहीं कटेगा।
2: अरे चुप।
0: क्या हुआ?
1: हाँ अरे चुप्पा, हाँ पेड़ अब नहीं कटेगा। तो यही बात थी ना, तुम दोनों शाम को फुसफुसा कर यही बातें कर रहे थे ना, कि अम्मा को जंगल में बहला लेंगे और पेड़ नहीं काटेंगे। है
0: तू समझ गई ना?
3: तू भी तो मान गई ना कि कोई भी पेड़ कटने लायक नहीं है, अब तू ही बता किसे काटे।
0: बता?
1: रहने दे रहने दे, तुम दोनों बड़े सयाने हो, मुझे हमेशा ऐसे ही बहला देते हो। मैं जिस भी पेड़ पर हाथ रखूंगी, तुम उसी के बारे में ऐसी ऐसी बातें बनाओगे कि मुझी को दया आ जाएगी। हाय रे, मेरी इच्छाएं क्या कभी पूरी नहीं होंगी?
0: होंगी होंगी, जरूर होंगी, मगर ऐसे नहीं।
1: फिर कैसे?
0: चल घर, चलते चलते बताता हूँ कि कैसे।
1: चल। बता।
0: सुन, हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ लगाएंगे अपने घर के आगे, फिर हमें फल मिलेंगे, फूल मिलेंगे, बुलबुले आएंगी, कोयल गाएंगी, गीत गाएंगी, महुआ सींचेंगे, हम फिर मेले जाएंगे, खूब काम करेंगे, हम तीनों मिलजुल कर ताल बनाएंगे, मछली पालेंगे, मछली फल सब्जी महुआ कटहल बेचेंगे, हाँ पैसे पाएंगे, बुधनी को देंगे, बुधनी खुश होगी, कलह नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी, झगड़ेगी भी नहीं। क्यों बुधनी, तब भी झगड़ेगी क्या?
3: क्यों अम्मा, तब भी झगड़ेगी?
0: बोल ना।
1: नहीं रे नहीं, मुझे क्या शौक है झगड़ने का। चल।
0: सच्ची।

0: और आइए सुनते हैं कार्यक्रम अर्जुन का निशाना।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा संदेश दिया गया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपना लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और उसे पूरा करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए।
2: बात बहुत पहले की है। हमारे देश में एक राजा थे पांडु। पांडु के पांच पुत्र थे जिन्हें पांडव कहते हैं। युधिष्ठिर इनमें सब में बड़े थे। युधिष्ठिर से छोटे थे भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांचों राजकुमार गुरु द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाना सीखते थे। भीम गदा चलाने में बहुत कुशल थे और अर्जुन धनुष बाण चलाने में। गुरु द्रोणाचार्य समय समय पर अपने शिष्यों की परीक्षा लिया करते थे। एक दिन उन्होंने पेड़ पर मिट्टी की एक चिड़िया टांग दी। फिर राजकुमारों से चिड़िया की आंख पर बाण मारने को कहा। गुरु द्रोणाचार्य ने बारी बारी से अपने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने चिड़िया की ओर संकेत करते हुए पूछा,
3: उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई देता है?
2: किसी ने कहा,
4: गुरुजी, मुझे राजकुमार, पेड़ और चिड़िया सब कुछ दिखाई दे रहा है।
2: किसी ने कहा,
5: मुझे पेड़ और चिड़िया दिखाई दे रही है।
2: किसी ने कहा,
6: मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं।
2: अर्जुन की बारी आने पर द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया। अर्जुन ने कहा,
6: गुरुजी, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है।
2: अब द्रोणाचार्य ने बारी बारी से सभी को बाण चलाने का आदेश दिया। अर्जुन का निशाना तो ठीक आंख पर लगा, किंतु और भाइयों का निशाना चूक गया। द्रोणाचार्य ने सभी राजकुमारों को बताया,
3: क्या तुम लोग समझ गए कि अर्जुन का तीर निशाने पर क्यों लगा? जिसे केवल लक्ष्य दिखाई दे वही सफल होता है। तुम लोगों को लक्ष्य के साथ साथ और बहुत सी चीजें भी दिखाई दे रही थीं, इसलिए तुम्हारा ध्यान बट गया और निशाना ठीक नहीं बैठा। अर्जुन का ध्यान केवल चिड़िया की आंख पर था, इसलिए उसका निशाना बिल्कुल ठीक बैठा और बाण ठीक चिड़िया की आंख पर लगा।
0: श्रोताओ, अभी आपने सुना कार्यक्रम अर्जुन का निशाना और अब इसी के

0: साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग
3: श्रोते हो, आताच आपण NCERT द्वारे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग ऐकला। हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला।

0: वाजता दिल्ली केंद्रावरून दिलं जाणारं दोपहर समाचार हे हिंदीतलं बातमीपत्र आम्ही आता सहक्षेपित करीत आहोत.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली. सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी. सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया. दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में इस वर्ष के 2रे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. शाम 5 बजे आयोजित समारोह में सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के बहादुर जवानों और अधिकारियों को उनकी असाधारण वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा. एक रिपोर्ट.
2: इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी. ये पुरस्कार असाधारण बहादुरी का प्रदर्शन करने वाले सैनिकों को दिए जाते हैं. ये सम्मान देश की आतंकवाद, उग्रवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में चुनौतियों के खिलाफ निरंतर लड़ाई को भी दर्शाते हैं. साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में दिखाई गई असाधारण बहादुरी को भी मान्यता दी जाती है. इससे पहले राष्ट्रपति ने इसी महीने की 8 तारीख को राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह के पहले चरण में वीरता पुरस्कार प्रदान किए थे. समाचार कक्ष से वैष्णवी.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की अपनी 3 दिवसीय यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं. यात्रा के अंतिम दिन श्री मोदी ने विक्टोरिया स्थित नवशक्ति विनायकर मंदिर में दर्शन और पूजा अर्चना की. उन्होंने वहां रहने वाले भारतीय प्रवासियों से भी मुलाकात की. बाद में प्रधानमंत्री ने पीस पार्क में स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की. ब्यौरा हमारे संवाददाता से.
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई गति देने वाली रही. इस यात्रा के दौरान श्री मोदी ने सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमेनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की. दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, समता निर्माण, समुद्री सुरक्षा और रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और बढ़ावा देने पर सहमति जताई. साथ ही हिंद महासागर क्षेत्र में अवैध मछली पकड़ने, मादक पदार्थों की तस्करी और समुद्री डकैती जैसी चुनौतियों पर विचार विमर्श किया. यात्रा के दौरान UPI, स्वास्थ्य, कृषि, नौवहन, अंतरिक्ष सहयोग, प्रत्यर्पण और लाइन ऑफ क्रेडिट से जुड़े कई समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में उनके योगदान के लिए गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन्स से भी सम्मानित किया गया. यह पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के क्षेत्र में सेशल्स का सर्वोच्च सम्मान है. इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कल सेशल्स की नेशनल असेंबली के विशेष सत्र को भी संबोधित किया और ऐसा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने. विशाल और विष्णु के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सेशल्स में मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग की समीक्षा की. साथ ही भारत की ओर से दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज के तहत चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा की गई. ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है. दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है. गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में हरियाणा और राजस्थान के बीच जल बंटवारे समझौते को लेकर एक बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी उपस्थित थे. इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत राजस्थान के हिस्से का पानी मानसून के दौरान हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना नहर प्रणाली से होकर गुजरने वाली भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाया जाएगा.
4: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी

0: यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने आज त्रिभाषा नीति पर दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड ने कहा कि कक्षा 10वीं के वर्तमान बैच को नई भाषा नीति का पालन नहीं करना होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि कक्षा 7वीं, 8वीं और 9वीं में पढ़ रहे वर्तमान बैच के छात्रों को भी कक्षा 10वीं में पहुंचने पर तीसरी भाषा में बोर्ड परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि कक्षा के अनुरूप संसाधन सामग्री समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराई जाएगी। नीट यूजी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI जांच के अंतर्गत 10 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 11 जुलाई तक बढ़ा दी है। आरोपियों को उनकी पिछली न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने आज श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्राप्त दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं से जुड़ी एक जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। याचिका में अदालत की निगरानी में वित्तीय अनियमितताओं की जांच और गहन लेखा परीक्षण की मांग की गई थी। न्यायमूर्ति MM सुंदरेश और शीलू नाग की बेंच ने याचिका की तात्कालिकता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद अदालत के खुलने पर याचिका को सूचीबद्ध किया जाए। सरकार ने विधिक मापन अधिनियम 2009 के अंतर्गत सुधार सूचना व्यवस्था लागू की है। ये प्रावधान जनविश्वास अधिनियम 2026 द्वारा लागू किया गया है। इसके अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रियात्मक या विनियामक नियमों का पहली बार उल्लंघन करने वाले कारोबारियों पर दंडात्मक कार्रवाई से पहले उन्हें अपनी गलती सुधारने का अवसर दिया जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सुधार का उद्देश्य व्यापार सुगमता बढ़ाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनावश्यक मुद्दों को कम करना और विश्वास आधारित नियामकीय ढांचे को मजबूत करना है। मंत्रालय ने बताया कि नई व्यवस्था के अंतर्गत विधिक मापन अधिकारी संबंधित संस्थान को सुधार सूचना जारी कर कमियों को दूर करने के लिए उचित समय देंगे। यदि निर्धारित अवधि के भीतर सुधार कर लिया जाता है तो दंडात्मक और कानूनी कार्रवाई से बचा जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि ये व्यवस्था निर्माताओं, आयातकों, पैकरों, डीलरों, मरम्मतकर्ताओं, व्यापारियों, लघु और मध्यम उद्यमों और अन्य विनियमित संस्थाओं पर लागू होगी। मंत्रालय ने कहा कि ये सुधार उपभोक्ता संरक्षण को कमजोर किए बिना पारदर्शी और कारोबार अनुकूलन नियामकीय व्यवस्था सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन ने आज संसद भवन में राज्यसभा के 8 नवनिर्वाचित और पुनः निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इन सदस्यों में कर्नाटक से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और भाजपा के M नागराज, पंजाब से भाजपा नेता तरुण चुग, गुजरात से मानसिंह मेरामन परमार और जितेंद्र मेघजी भाई कंजरिया, राजस्थान से डॉ अलका सिंह, मणिपुर से अधिकारी मयूम शारदा देवी और महाराष्ट्र से NCP नेता राजेंद्र हीरालाल जैन शामिल हैं। तमिलनाडु में करूर से AIADMK विधायक MR विजय भास्कर ने आज विधानसभा अध्यक्ष JCD प्रभाकर को अपना इस्तीफा सौंपा। श्री प्रभाकर ने बताया कि उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इसके साथ ही विधानसभा से इस्तीफा देने वाले AIADMK विधायकों की संख्या बढ़कर 7 हो गई है। दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत घर घर जाकर मतदाताओं को मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करने का कार्य कल से शुरू होगा। दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी अशोक कुमार ने आज नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूथ स्तरीय अधिकारी BLO कल से मतदाता गणना प्रपत्र वितरित करेंगे।
3: जो हमारे लिए डेट है हाउस टू हाउस, जिसमें BLOs एक एक घर जाकर सभी इलेक्टर्स को इनूमरेशन फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, वो 30 तारीख से शुरू हो जाएगी और 29 जुलाई तक फॉर्म वापसी की भी डेट है। और इसके लिए जो हमारे 13,033 बूथ्स हैं और सभी पे BLOs अपॉइंटेड हैं, तो सभी BLOs को उनके इनूमरेशन फॉर्म हमने दे दिए हैं, जो कि कल सुबह से अपनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। इसके साथ साथ ऑनलाइन फॉर्म भरने की भी सुविधा दी गई है।
1: मतदाता www.voters.eci.gov.in पर ऑनलाइन भी गणना प्रपत्र भर सकते हैं। मध्य गुजरात क्षेत्र पर केंद्रित दो दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात क्षेत्रीय सम्मेलन का आज वडोदरा स्थित जीएसएफसी विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन

0: गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और केंद्रीय आवास तथा शहरी मामलों और विद्युत मंत्री मनोहर लाल की उपस्थिति में हुआ। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने औद्योगिक विकास को गति देने में विद्युत क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सुदृढ़ योजना के कारण भारत ने इस ग्रीष्मकाल में 271 गीगावाट की रिकॉर्ड चरम बिजली मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। अमेरिका और ईरान जवाबी सैन्य कार्रवाई रोकने और कलकत्ता की राजधानी दोहा में फिर से वार्ता शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। इस वार्ता का उद्देश्य होर्मुज जलडमरू मध्य से संबंधित विवाद का समाधान करना है।
1: पिछले कुछ दिनों में दोनों देशों के बीच सैन्य कार्रवाई तेज हो गई थी। अमेरिका ने ईरान पर युद्ध विराम का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए उसके सैन्य ठिकानों पर हमला किया था। इसके जवाब में ईरान ने बहरीन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमले किए। दोनों देश फिलहाल सैन्य कार्रवाई रोकने पर सहमत हुए हैं ताकि होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की आवाजाही सामान्य बनी रहे। पहले ये वार्ता स्विट्जरलैंड में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर होनी थी, लेकिन हालात बदलने के बाद इसका स्थान और विषय दोनों बदल दिया गया है। समाचार कक्ष
0: अमीशा। समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने पवित्र अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा संपन्न कर वार्षिक अमरनाथ यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त को समाप्त होगी। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज अद्वितीय आध्यात्मिक उत्साह का माहौल रहा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पुरी में वार्षिक देव स्नान पूर्णिमा के लिए लाखों श्रद्धालु एकत्र हुए।
2: आज पुरी में लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ के पवित्र देवस्नान पूर्णिमा समारोह देखा, जो इस साल की रथ यात्रा की उत्सव की औपचारिक शुरुआत है। सदियों पुरानी मंदिर परंपराओं के अनुसार देवताओं को मंदिर परिसर के भीतर स्थित पवित्र सुना कुआ यानी स्वर्ण कुप से लाए गए पवित्र सुगंधित जल के 108 घड़ों से स्नान कराया गया। विस्तृत स्नान के बाद देवताओं को गजानन के रूप में सजाया गया। अब वे अणसर के 2 हफ्ते लंबी अवधि के दौरान एकांतवास में रहेंगे और अगले महीने की 16 तारीख को शुरू होने वाली सालाना रथ यात्रा से पहले नवजौवन दर्शन के लिए फिर से प्रकट होंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: फुटबॉल में फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हरा दिया। अमेरिका के लॉस एंजलिस में खेले गए मुकाबले में कनाडा के स्टीफन स्टाक्यो ने एकमात्र गोल किया। मौसम विभाग ने कल तक पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, केरल और माहे में बुधवार तक तेज बारिश की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में ऐसा ही मौसम बने रहने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लघु व्यवसायों के विकास और उद्यमियों के लिए अवसर विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉ. रजनीश भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में वीरता पुरस्कार प्रदान करेंगी। हरियाणा और राजस्थान के बीच यमुना जल बंटवारे की 3 दशक पुरानी परियोजना को मंजूरी मिली। सर्वोच्च न्यायालय ने राम मंदिर दान मामले में कथित वित्तीय अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार किया। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 10वीं कक्षा के वर्तमान बैच को त्रिभाषा नीति से छूट दी। सरकार ने व्यापार सुगमता बढ़ाने के लिए सुधार सूचना तंत्र शुरू किया। दिल्ली में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कल से शुरू होगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले नॉकआउट मुकाबले में कनाडा ने दक्षिण अफ्रीका को 1-0 से हराया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: प्रसार भारतीच्या वेव्ज OTT प्लॅटफॉर्म आणि न्यूज ऑन AIR ॲप सहित 558 किलोहर्ट्झवर आकाशवाणी मुंबईची ही आहे अस्मिता वाहिनी। दुपारचे 2:30 आणि 2 सेकंद झालेले आहेत। नादब्रह्म अंतर्गत शास्त्रीय संगीताचा कार्यक्रम आपण ऐकणार आहोत। या कार्यक्रमात आज विजयशंकर चॅटर्जी यांचं इसराज वादन आपण ऐकणार आहोत। राग गौड सारंग

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान कर रही हैं।

0: मेजर जनरल गुरप्रीत सिंह, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल।
1: समारोह में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाष्णेय, लेफ्टिनेंट जनरल विकास रोहेला, लेफ्टिनेंट जनरल हरबिंदर सिंह वंद्रा और लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंदर पाल सिंह को अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं। ये पुरस्कार जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और देश की सीमाओं पर आतंकवाद, उग्रवाद और शत्रुतापूर्ण खतरों के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को दर्शाते हैं। साथ ही विमानन, समुद्री अभियानों और मानवीय मिशनों में असाधारण साहस के कार्य को भी मान्यता देते हैं। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधा

0: कृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अन्य केंद्रीय मंत्री और सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकी के तेजी से उत्पादन, रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री नड्डा ने इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा बढ़ाया है, इससे देश के नागरिकों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक सस्ती और सुलभ हो गई हैं। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ब्रिक्स CCI के प्रतिनिधिमंडल ने आज नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक को संबोधित करते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि वैश्विक नवाचार केंद्र के रूप में भारत की बढ़ती प्रतिष्ठा और उभरती प्रौद्योगिकियों में इसकी अग्रणी भूमिका उद्योग संगठनों को मजबूत अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी बनाने का एक आदर्श अवसर प्रदान करती है, जो राष्ट्रीय विकास और वैश्विक प्रगति में योगदान देती है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि ये वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 24 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के नॉकआउट चरण में आज ब्राजील का सामना जापान से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10:30 से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणीचं हे नागपूर केंद्र आहे, प्रसारित करीत आहोत प्रादेशिक मराठी बातम्या।
2: आकाशवाणी नागपूर, हेमांगी कुलकर्णी आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे। ठळक बातम्या। नसरापूर इथल्या लैंगिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणातील आरोपीला फाशीची शिक्षा। शिक्षक पात्रता परीक्षा पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून विधानसभेत विरोधकांचा सभात्याग। विधान परिषदेच्या उपसभापती पदाची निवडणूक येत्या बुधवारी होणार। आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते राजेंद्र जैन यांनी घेतली राज्यसभा सदस्यत्वाची शपथ। आता सविस्तर बातम्या। पुणे जिल्ह्यातल्या भोर तालुक्यातल्या नसरापूर इथं 3.5 वर्षाच्या बालिकेवर अत्याचार करून तिची हत्या केल्याच्या प्रकरणातला आरोपी भीमराव कांबळे याला न्यायालयानं फाशीची शिक्षा दिली आहे। पुणे जिल्हा आणि सत्र न्यायालयानं विशेष न्यायाधीश SR साळुंखे यांनी आज हा निर्णय दिला। आरोपीनं केलेला गुन्हा हा अत्यंत क्रूर, अमानुष आणि दुर्मिळातील दुर्मिळ स्वरूपाचा असल्याचं न्यायालयानं नमूद केलं। आरोपीविरोधात सादर करण्यात आलेले परिस्थितीजन्य आणि वैज्ञानिक पुरावे भक्कम असल्याचं निरीक्षण नोंदवत केवळ वय हा शिक्षेत सवलत देण्याचा आधार ठरू शकत नाही असं न्यायालयानं स्पष्ट केलंय। या प्रकरणात गुन्हा दाखल झाल्यापासून 58 दिवसात निर्णय देण्यात आल्यामुळे हा राज्यातला सर्वात वेगवान खटला ठरलाय। या प्रकरणाच्या निकालावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी समाधान व्यक्त केलंय. नसरापूर इथल्या बालिकेवरच्या अत्याचार आणि खून प्रकरणाचा जलद तपास आणि निकाल लावल्याबद्दल फडणवीस यांनी न्यायालय, पोलीस आणि वकिलांचे आभार मानले. विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदन दिलं. या निकालामुळे सर्वसामान्यांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक

0: आणि माझ्या मित्र मैत्रिणींना सांगते.
1: न्यू रिलीजेस बॉलिवूड की न्यू थिंग भी है. डॉगी भी है, न्यू फौजी भी है.
2: प्रसार भारती है कराता भारत के हर रूप का दर्शन.

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सेशल्स के साथ 50 वर्ष पुरानी साझेदारी अब नवाचार, स्थिरता और साझा समृद्धि के माध्यम से आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। मंत्रिमंडल ने बुनियादी ढांचा निवेश में तेजी लाने के लिए राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की प्रतिबद्धता को मंजूरी दी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक पारित। पूर्वोत्तर पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरलम के कुछ हिस्सों में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए जगह पक्की की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया कि पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
1: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ग्रीस के विकास मंत्री ताकिस थियोडोरिकाकोस से आज ग्रीस में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि उन्होंने व्यापार, निवेश, औद्योगिक सहयोग और सुदृढ़ आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से भारत ग्रीस आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष

0: NIIF में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। यह बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस अतिरिक्त निवेश का उपयोग NIIF के अवसंरचना केंद्रित दूसरे कोष की स्थापना के लिए किया जाएगा। अवसंरचना कोष द्वितीय के लिए लगभग 30,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। इससे परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल और शहरी अवसंरचना तथा ई मोबिलिटी जैसे उभरते क्षेत्रों में निवेश किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी के अंतर्गत अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। ये विधेयक असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने, असामाजिक तत्वों की कड़ी सजा देने के उद्देश्य से पारित किया गया है। चर्चा में भाग लेते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि अधिनियम बनने के बाद इन विधेयकों को असामाजिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने और राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में DRDO को वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन DFP 2026 जारी किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP 2026 अनुसंधान और विकास, पारिस्थितिकी तंत्र से उभरने वाली प्रणालियों, प्लेटफॉर्मों और प्रौद्योगिकियों के तेजी से उत्पादन रक्षा बलों में उनके समावेश को सुगम बनाएगा। हरियाणा राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृह मंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशक से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। इस बीच जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि समझौते के अंतर्गत मानसून के दौरान राजस्थान के हिस्से का पानी भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से हथनीकुंड बैराज से आपूर्ति किया जाएगा।
1: इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि समृद्ध और विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब गांव समृद्ध, आत्मनिर्भर और विकसित हों। नई दिल्ली में आयोजित 2 दिन के राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि गांव केवल लाभार्थी ही नहीं बल्कि विकास के प्रेरक शक्ति भी हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए कई डिजिटल पहलों का शुभारंभ किया। श्री नड्डा ने कहा कि इन पहलों को सरकार द्वारा हासिल की गई एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।
2: Applications launch is going to play a very important role.
3: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 सालों में कई नई पहलें शुरू की गई हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ने स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया है और उन्हें देश में सस्ता और सुलभ बनाया है। इसमें 62 करोड़ लोग शामिल हैं और अब भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पब्लिक हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है।
2: लार्जेस्ट डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ केयर।
0: श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में लगभग 1,85,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं। आज नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में उन्होंने कहा कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर नागरिकों के लिए प्राथमिक संपर्क केंद्र है जो पहले, दूसरे तथा तीसरे स्तर के स्वास्थ्य सेवाओं और स्वास्थ्य प्रणाली के बीच एक मजबूत सेतु का काम करते हैं। संचार और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के गुना जिले के अपने 4 दिन के दौरे के दौरान लगभग 350 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया। ये परियोजनाएं पर्यावरण, सिंचाई, रेलवे, सड़क, बिजली, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास से संबंधित हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से दो दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति

0: विद्यार्थी कल विजयनगरम में स्थित केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के सत्ता में आने के बाद से त्रिपुरा और नई दिल्ली के बीच की दूरी काफी कम हो गई है। उन्होंने बताया कि बेहतर संपर्क के कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है। आज अगरतला के राजकीय अतिथि गृह में समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक की। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सबका साथ सबके विकास के दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध है। दिल्ली मंत्रिमंडल ने आज दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दे दी। इसे 1 जुलाई से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह नीति पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों, विशेष रूप से शून्य उत्सर्जन वाहनों पर केंद्रित है। हमारी संवाददाता सौम्य शरण की रिपोर्ट।
1: श्रीमती गुप्ता ने बताया कि अगले 4 वर्षों में इस नीति पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वहीं 8,000 करोड़ रुपए की लागत से 30,000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन और अन्य अवसंरचनात्मक तैयारियां की जाएंगी,
2: जिसमें हमने खरीद पे प्रोत्साहन दिया है, स्क्रैपिंग पे प्रोत्साहन दिया है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है और रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन की छूट भी इस पॉलिसी में दी गई है।
1: वहीं 30 लाख रुपए तक की कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। श्रीमती गुप्ता ने बताया कि प्रोत्साहन राशि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस नीति से 2 पहिया, तिपहिया, 4 पहिया वाहन और N1 ट्रक जैसी वाहन लाभान्वित होंगे। इससे परिवहन व्यवस्था बेहतर होगी और दिल्ली एक स्मार्ट सिटी की दिशा में तेजी से आगे बढ़ेगी।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसानी से धन लाभ दिलाने वाले किसी निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन किया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि वीडियो फर्जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से निर्मित है। कार्यालय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने ऐसी किसी भी निवेश योजना, उपकरण या प्लेटफॉर्म का समर्थन नहीं किया है। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित उन कई खबरों का भी खंडन किया है जिनमें दावा किया गया था कि भारत के पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल E20 के इस्तेमाल के खिलाफ चेतावनी वाले होर्डिंग लगाए गए हैं। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावे झूठे हैं। इकाई ने कहा कि खुदरा पेट्रोल दुकानों पर ऐसा कोई होर्डिंग नहीं लगाया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे NewsOnAIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। वेनेजुएला के भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत तैनात भारतीय सेना का एक फील्ड अस्पताल पूरी तरह से चालू हो गया है। ये वेनेजुएला के लोगों को 2400 घंटे मुफ्त चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि सेना भूकंप से प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा होर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के एक नए दौर की घोषणा की है। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि ईरान ने इस संबंध में बैठक का अनुरोध किया है और ये बातचीत दोहा में होगी। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है कि उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने कहा है कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। दोहा में तकनीकी वार्ता की खबरों की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। संयुक्त अरब अमीरात और ईरान के बीच सीधी उड़ान सेवाएं फिर से शुरू हो गई हैं। क्षेत्रीय संघर्ष के बाद से 28 फरवरी से दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क निलंबित था। देश में इस वर्ष मई में वार्षिक आधार पर औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP पर आधारित औद्योगिक उत्पादन 5.1% की वृद्धि हुई। बीते अप्रैल में देश के औद्योगिक उत्पादन 4.9% की वृद्धि हुई थी। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ है मनोज पाठक।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 372 अंक घटकर 76,728 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 110 अंक कम होकर 23,946 दर्ज हुआ। और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 14 पैसे कमजोर होकर ₹94.54 पर बंद हुआ।
0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2028 में होने वाले लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों के लिए स्थान पक्का कर लिया है। ICC ने पुष्टि की कि भारत सहित ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने भी ओलंपिक खेलों में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने T20 विश्व कप में महाद्वीप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के आधार पर क्वालिफाई किया है। फीफा फुटबॉल

0: नमस्कार, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ आपके साथ प्रियंका अरोड़ा। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और नवाचार में छोटे व्यवसायों के महत्वपूर्ण योगदान को पहचानने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए हाल ही में 27 जून को विश्व MSME दिवस मनाया गया। भारत की अगर बात करें तो कृषि के बाद रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत MSME क्षेत्र है। MSME न केवल रोजगार के लिए नए अवसर सृजित करते हैं, बल्कि नवाचार को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को सशक्त बनाने और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को गति देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज जब हम भारत, विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, तो उसके लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ने की दिशा में MSME क्षेत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। आज पब्लिक स्पीक में हमने यही विषय चुना है, लघु व्यवसायों का विकास और उद्यमियों के लिए अवसर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अपर सचिव और विकास आयुक्त डॉक्टर रजनीश। आपका स्वागत है डॉक्टर रजनीश कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद।
0: श्रोताओं, स्टूडियो की फोन लाइंस खुली है, आप भी अपने प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। स्टूडियो का नंबर है 2331-0481 या 2371-7117, 2371-7106 या 2331-4444। याद रखें, इससे पहले 011 जो दिल्ली का कोड है वो लगाना ना भूलें। व्हाट्सएप नंबर भी है 9289094044। और इसके अलावा आप जानते हैं ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पे भी #AskAIR के जरिए आप अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। डॉक्टर रजनीश, भारत जैसे विशाल देश में हम देखते हैं कि शहरों की गलियों से लेकर गांवों तक बड़ी संख्या में छोटे छोटे उद्यम चल रहे हैं। बड़े उद्योगों की तुलना में इनका कितना महत्व है और MSME क्षेत्र का देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है?
1: प्रियंका जी, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो हैं, ये हमारी आर्थिकी में 31% से ऊपर योगदान रखते हैं
0: जी।
1: और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 35% से ऊपर इनका योगदान है। एक्सपोर्ट्स में 48% से ऊपर योगदान सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का है। सबसे बड़ी बात जो MSME की है वो जैसा आपने बताया कि एग्रीकल्चर के बाद लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट MSMEs हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ MSMEs के माध्यम से 38 करोड़ से ऊपर लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। और हम ये मानते हैं मिनिस्ट्री में कि जो हमारे विकसित भारत की प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना है उसमें MSME का एक बहुत बड़ा योगदान इसलिए है क्योंकि इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इनका एक बहुत बड़ी भागीदारी है।
0: सही बात है, 38 करोड़ से जितने ज्यादा लोग जिस क्षेत्र से जुड़े हों तो लाजमी है उस क्षेत्र पर ध्यान देना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है और सरकार दे भी रही है। आगे चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता से बात कर लेते हैं जो दिल्ली से जुड़े हैं, धर्मवीर जी।
2: नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में, आपका प्रश्न क्या है?
2: धन्यवाद, मैं धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ
0: जी।
2: तो एक्सपर्ट को नमस्कार। जैसे हमारे एक्सपर्ट भी जानते हैं कि गांधीनगर दिल्ली की सबसे, एशिया की सबसे बड़ी रेडीमेड मार्केट है। यहाँ

0: जो भी आपके लघु उद्योग और छोटे उद्योग सारे चलते हैं, तो इसमें क्या बेनिफिट मिलता है? क्योंकि यहाँ जैसे फैक्ट्री है, फैक्ट्री में कोई 50 भी स्टाफ काम करता है, कहीं 30 करता है, कहीं 90 स्टाफ काम करता है। इन लोगों को जानकारी नहीं है इसका कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाया जाए।
1: जी
2: देखिए, एमएसएमई के अंदर हमारे कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट है बैंकों से सुगम और कम दर ब्याज के ऊपर ऋण प्राप्त करना। इनफैक्ट हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए एलिजिबल हैं। और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में 10 लाख करोड़ रुपए का क्रेडिट जो पहले इनको मिलता था, अब वो बढ़कर 36 लाख करोड़ के ऊपर हो गया है। तो पिछले 10 साल में 3 गुना से ऊपर की वृद्धि हम देखते हैं। जो एक्सेस टू क्रेडिट है माइक्रो और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए, वो प्रदान की गई है। दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखा है कि सूक्ष्म और लघु उद्यम जो हैं, वहाँ उद्यमियों को जब वो बैंक में अपना प्रोजेक्ट लेके जाते हैं या उनको कोई अपने व्यवसाय विस्तार के लिए धनराशि चाहिए होती है, तो उस समय नॉर्मली बैंक्स जो हैं वो कोलेटरल मांगते हैं
1: जी।
2: और कोलेटरल देना एक समस्या रहती है। तो मंत्रालय की तरफ से एक हमारी स्कीम चलती है जिसको हम CGTMSE बोलते हैं, क्रेडिट गारंटी फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो जितने भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इनको बिना कोलेटरल के ऋण देने की एक व्यवस्था इस योजना के माध्यम से की गई है। बेसिकली क्या होता है कि कोई बैंक अगर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज को लोन दे रहा है, तो उसका डिफॉल्ट रिस्क हम CGTMSE से कवर करते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 2000 से ये योजना चल रही है, 2000 से लेकर 2020 तक 20 सालों में 3,20,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटीज हमने
1: दी है।
2: और 2023 में एडिशनल 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी हमें देनी थी, और 2,00,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटीज का जो टारगेट था, हमने 3.5 साल में ही 10,00,000 करोड़ के ऊपर क्रेडिट गारंटीज और दी हैं। तो हमारा मंत्रालय की तरफ से एक बहुत बड़ा पुश ये रहता है कि जितने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, उनको अपने व्यवसाय विस्तार के लिए आसानी से बैंकों से ऋण
1: उपलब्ध हो जाए। और उसमें सबसे बड़ी बात जो अक्सर चिंता का सबब रहता है कि गिरवी रखना पड़ेगा कुछ, तो इस केस में जो आप योजना है जो CGTMSE, उसके लिए आपको कोई गिरवी नहीं रखना कुछ, आप निश्चिंत होकर बैंक के पास जा सकते हैं और अगर सही है सारा प्रोजेक्ट तो आपको उस पर लोन मिल सकता है।
2: इसमें दो बातें मैं और बताना चाहूंगा। पहले कोलेटरल फ्री लेंडिंग की जो RBI की लिमिट थी वो 10,00,000 रुपए थी, तो हमने RBI से मैटर टेकअप किया कि इस लिमिट को बढ़ाया जाए, और इस वर्ष 1 अप्रैल से ये लिमिट दुगनी कर दी गई है। तो 20 लाख तक का लोन अगर कोई लेना चाहता है तो उसमें वैसे भी कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है। और क्रेडिट गारंटी स्कीम के अंदर 10 करोड़ रुपए तक का क्रेडिट गारंटी हम लोग देते हैं, इसमें 75% से लेकर 85% तक का गारंटी कवर रहता है। तो एक ये योजना है जिसके माध्यम से हमने देखा है कि MSMEs अपने व्यवसाय विस्तार को आगे बढ़ावा दे रहे हैं
1: जी, बूस्ट अप मिलता है उनको। हरियाणा से एक और श्रोता जुड़े हैं, राजेंद्र जी।
3: नमस्कार जी, प्रियंका जी और विशेषज्ञ जी, नमस्कार जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि देश में लघु उद्योग तो काफी है, लेकिन कैसे माल बेचने की उनको बड़ी समस्या है। देश में या राज्य में ऐसी कोई मार्केट हो जो अपना माल बेच सके और वो अपना हुनर दिखा सके। दूसरा, जो अभी बैंक लोन आता है तो उसकी बैंक गारंटी होती है, तो वो आम आदमी की होती है, तो पता नहीं लगता अभी किस टाइम लोन आएगा, तो पता करने जाए तो ग्रांट कहते हैं खत्म हो चुकी है। तो ये लोगों में कैसे जानकारी फैले कि जो ग्रांट आए लोन का टाइम को तो पता लगे लोगों को। नमस्कार
1: जी।
2: आपने जो प्रश्न पूछा इसके दो भाग हैं। पहला ये जानना चाहते हैं कि मार्केटिंग में किस तरह से इनकी सहायता की जा सकती है। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, इसके लिए हमारा पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी ऑर्डर है, और ये हमारे एक्ट के तहत, MSME डेवलपमेंट एक्ट के तहत है, जिसके अंदर जितनी भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उनको 25% अपनी खरीद जो है वो मैंडेटरली माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस से करनी है। और दूसरी बात ये है कि जब कभी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस किसी टेंडर में पार्टिसिपेट करते हैं तो 15

0: 15% की प्राइस प्रेफरेंस भी उन्हें मिलती है।
1: अच्छा।
0: मतलब ये कि मान लीजिए अगर किसी ने टेंडर में जो लोएस्ट कोट किया है वो 100 रुपए है, और माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज ने 115 तक का भी अगर कोट किया है, तो वो अगर हम उसे एक मौका देते हैं कि आप 100 रुपीज जो कि मिनिमम प्राइस कोट आया है अगर आप उसको मैच करते हैं तो 25% वो ऑर्डर आपको मिलेगा। तो एक ये हमारी प्राइस प्रेफरेंस है जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए है। इसके अलावा हम एक हमारी योजना है PMS, जिसके अंदर हम हमारे जो व्यवसायी हैं उनको ट्रेड फेयर्स में और मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर पार्टिसिपेट करने में हम मदद करते हैं, तो उस योजना का ये लाभ ले सकते हैं। जो बैंक की इन्होंने बात की कि बैंक में लोन के लिए जाते हैं तो वहाँ गारंटीज के बारे में पता नहीं होता, तो ये एक्चुअली क्रेडिट गारंटी जो है इसके लिए आवेदन करने की माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज को आवश्यकता नहीं है, ये क्रेडिट गारंटी हम बैंक को ही देते हैं। तो जब लोन इनको दिया जाता है तो उस समय बैंक्स जो है ये क्रेडिट गारंटी कवर हमारे CGTMSE से लेते हैं, और हम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के अंदर और अधिक अवेयरनेस क्रिएट करने पे भी जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं और जो हमारी MSME एसोसिएशंस हैं उसके माध्यम से इस बात का प्रसार कर रहे हैं कि आप जब लोन लेने बैंक में जाएं तो कृपया CGTMSE का जरूर हवाला दें, ताकि आपको कोलेटरल जो है वो ना देना पड़े और कोलेटरल फ्री लेंडिंग जो है आप उसकी सुविधा
1: जी आप बिना गिरवी के ये ऋण प्राप्त कर सके। तो इसलिए जो CGTMSE जो योजना का नाम है उसका जिक्र जरूर करें जब भी आप इस योजना का लाभ लेने जाते हैं। मध्य प्रदेश से जुड़े हैं विपिन सागर जी। विपिन जी आप आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, हम फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे उनसे। जहां तक अभी हमने बात की कि मार्केटिंग की, तो जैसे एक जेम पोर्टल भी है उसके थ्रू भी जो छोटे व्यवसायियों को फायदा हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है वो भी सरकार की ओर से तैयार की गई। क्योंकि ब्रांडिंग की जब बात करती है, जो बड़े बड़े जो उद्योग हैं या अन्य हम जो कॉरपोरेट कंपनीज की बात करते हैं तो वो पैसा खर्च करके अपने दम पर अपनी पहचान बना लेते हैं, लेकिन जो छोटे व्यवसाय हैं उनको कैसे पहचान मिले?
0: देखिए, जेम पोर्टल के माध्यम से एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज आया है प्रोक्योरमेंट्स में। पहली बात तो ये, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो भी प्रोक्योरमेंट ये करते हैं इनको जेम से करना है, ये हमारे GFR के अंदर ये चीज़ निहित है। दूसरी बात ये कि जेम पे जो प्रोक्योरमेंट होता है, क्योंकि ये एक फेसलेस प्रोक्योरमेंट है, पोर्टल के ऊपर टेंडर फ्लोट होता है और उसके अंदर प्रोक्योरमेंट रिक्वायरमेंट्स हैं और कोई भी इसके अंदर बिड कर सकता है, तो एक बहुत ही पारदर्शी रूप में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं वो जेम का फायदा उठा रहे हैं। इनफैक्ट अगर हम देखें पिछले 5 साल में संख्या MSMEs की जो जेम पे प्रोक्योरमेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बहुत बड़ी है, और इसके अंदर जो अमाउंट है प्रोक्योरमेंट का और जो अपॉर्चुनिटीज मिली हैं सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों को उसके अंदर भी बहुत विस्तार हुआ
1: जी। हम चर्चा जारी रखते हैं, पहले अपने श्रोता को ले लेते हैं। शिमला से जुड़े हैं राकेश जी।
2: जी नमस्कार।
1: नमस्कार,
2: मैं राकेश बात कर रहा हूँ, कोटखा शिमला हिमाचल प्रदेश।
1: जी
2: जी, मेरा ये प्रश्न है कि हम बागवानी क्षेत्र के लिए जो है MSME के लिए लोन लेने का, तो कितने परसेंट में ब्याज हमें मिलता है बागवानी क्षेत्र के लिए?
1: जी
0: देखिए, जो एग्रीकल्चरल लोन्स हैं आप जानते हैं कि बैंक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसके वो खुद स्वयं निर्धारित करते हैं, RBI की गाइडलाइंस हैं। बैंक्स को ये इख्तियार है कि वो ये लोन के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चार्ज करना है वो बैंक इसको डिटरमिन करता है। पर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस जो हमारी हैं, और अगर आप हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर होते हैं तो फिर आपको प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग की के लाभ मिलेंगे। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के अंदर जो ब्याज की दर है वो काफी कम रहती है। एक्चुअल क्या एग्जैक्ट आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो तो डिपेंड करता है कि लोन अमाउंट आप कितना चाहते हैं, पर नॉर्मली 8-10% के बीच में अगर आप छोटा लोन लेना चाहते हैं तो प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में आप ये लोन की सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। और कोटखाई क्योंकि सेब और बागवानी के लिए बहुत प्रसिद्ध इलाका है,

0: ये आप हमारे CGTMSE का कवर भी इसके अंदर ले सकते हैं। और सबसे पहले आपको अपने जो आप व्यवसाय कर रहे हैं, अगर आप प्रोसेसिंग में हैं, तो फिर आपको इसके हमारे उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना होगा।
1: जी। मध्य प्रदेश से एक और श्रोता जुड़े हैं, छतरपुर से राशिद अहमद खान जी।
2: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
2: मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान।
1: जी
2: मेरे छोटे छोटे दो प्रश्न है कि लघु उद्योग की परिभाषा क्या है, इन टर्म ऑफ लागत कितनी लागत होना चाहिए तब वो लघु उद्योग में आता है। दूसरा सवाल ये है कि प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई से 7 जुलाई तक वन महोत्सव मनाया जाता है, तो उसकी सभी लोगों को, पूरे देशवासियों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नर्सरी प्लांट की कोई नर्सरी लगाई जाए, या फूलों की खेती के लिए कोई प्लांट डाला जाए, तो उसके लिए हमको लोन वगैरह मिल सकता है क्या, प्लीज बता दीजिए। थैंक यू।
0: राशिद जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि माइक्रो स्मॉल मीडियम ये तीन श्रेणियाँ हैं MSME में, और इनकी कैटेगराइजेशन की जाती है इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, और दूसरा टर्नओवर पे। अगर हम टर्नओवर की बात करें तो हमारे माइक्रो एंटरप्राइजेस बेसिकली जिनकी 10 करोड़ तक की टर्नओवर है वो माइक्रो एंटरप्राइजेस रहते हैं, जिनकी 100 करोड़ तक की टर्नओवर है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं, और जिनकी 500 करोड़ तक की टर्नओवर है वो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। और इसी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी है वो 2.5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी माइक्रो के लिए है, 25 करोड़ स्मॉल के लिए है, और 125 करोड़ मीडियम के लिए है। मैं यहाँ पर अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूँगा कि ये डेफिनेशन MSME की हमने पिछले साल रिवाइज की थी, और ये लिमिट्स हमने टर्नओवर की लिमिट को हमने दुगना किया है, और इन्वेस्टमेंट इन
1: जी
0: प्लांट एंड मशीनरी इसको 2.5 गुना बढ़ाया गया है। और इसका पर्पज़ ये है कि बहुत से हमारे MSMEs इस बात से चिंतित रहते थे कि अगर हम ग्रो करेंगे, बड़े होंगे, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी, या हम अपनी प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्ट करेंगे तो हम MSME का स्टेटस खो देंगे, और ये जो बेनिफिट MSMEs के मिलते हैं वो हम उनसे वंचित हो जाएंगे।
1: जी
0: तो इस चीज को देखते हुए इस डेफिनेशन को हमने बढ़ाया है। और दूसरा सवाल जो आपने बैंक से के रिलेशन में कहा है, तो प्रोसेसिंग यूनिट का अगर आप कोई प्लांट लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आप बैंक को संपर्क करें, आपको लोन मिलेगा।
1: जी। हम एक बार फिर से जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, विपिन जी।
3: जी नमस्ते मैम।
1: जी नमस्कार।
3: मैम मेरा सवाल ये था कि जो लघु उद्योग हैं जिनमें पहले से मतलब डाउनफॉल चल रहा है, किसी भी प्रकार का लघु उद्योग हो सकता है, तो पहले से ही अगर उनका क्रेडिट सही नहीं है बैंक का, तो क्या ऐसे में फाइनेंशियली हेल्प मिल सकती है जो योजना आप बता रहे हैं, क्योंकि अगर पहले ही वो लोन को ले चुके हैं और सक्सेस नहीं हो पाए हैं, और क्या इसमें सभी प्रकार के लघु उद्योग भी शामिल होते हैं या फिर कुछ छोड़ भी दिए गए हैं?
0: देखिए, आपने जो ये बात की कि लघु उद्योगों में या सूक्ष्म उद्योगों में डाउनफॉल है, तो इसमें मैं इस बात से थोड़ा मैं आपको अपना व्यू देना चाहूँगा। शायद जो आप कह रहे हैं वो पूरी तरह ठीक नहीं है
1: शायद
0: उसका।
1: उन्होंने एक जनरल सवाल भी पूछा है, जैसे कोई उद्योग है अगर वो अच्छा नहीं चल रहा, क्रेडिट ले चुके हैं, नहीं चुका पाए होंगे, तो क्या उनको और दोबारा से फाइनेंस मिल सकता है इस तरह
0: जी
1: से?
0: जी मैं इस प्रश्न का उत्तर दो तरह से देना चाहूंगा। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों की अगर हम सिर्फ बात करें, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस की, और मीडियम को भी अगर इसमें जोड़ लें, तो हमारा 2023 तक, 1 अप्रैल 2023 तक 1,65,00,000 MSMEs हमारे साथ पंजीकृत थे,
1: जी
0: और ऐसे बहुत से MSMEs थे जो कि काम कर रहे थे, हमारी अर्थव्यवस्था का पार्ट थे, पर हमारे उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर नहीं थे, औपचारिक रूप से नहीं थे। तो एक ड्राइव हमने चलाई स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ, MSME एसोसिएशंस के साथ, आज ये संख्या 1,65,00,000 जो 2023 तक थी, 3 साल के अंदर ये संख्या बढ़कर 1,65,00,000 से 8,70,00,000 हो गई है। तो बहुत बड़ा एक व्यापक विस्तार फॉर्मलाइजेशन में हम देखते हैं कि MSME सेक्टर में पिछले 3 सालों में हुआ है। दूसरी बात ही हम मानते हैं कि MSMEs जो हैं वो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस का पार्ट हैं, और काफी जो हमारी इकोनॉमी के रेजिलियंस है, अगर हम 31% कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो डेफिनेटली इट इज थ्रू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। जो इन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न उठाया कि अगर मान लीजिए किसी एंटरप्राइज में थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और किसी कारण से वो अगर अपना लोन पे नहीं कर पाए हैं, तो क्या उनको कोई आगे सुविधा प्राप्त होती है? तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि कि अगर

0: मान लीजिए आपका कोई पेमेंट डिफॉल्ट है, वो पेमेंट डिफॉल्ट 30 दिन तक अगर आपने उस पेमेंट डिफॉल्ट को कवर नहीं किया है तो आपका अकाउंट स्पेशल मेंशन अकाउंट में जाता है, इमीडिएटली उसको एनपीए नहीं घोषित किया जाता। फिर अगर एसएमए जीरो स्टेज पे 30 दिन तक नहीं हुआ, 60 दिन तक भी अगर आपने अपने अकाउंट को सेटल नहीं किया है तो वो एसएमए वन स्टेज पे जाता है। 60 दिन में भी अगर नहीं हुआ, आपने 60 से 90 दिन तक उस अकाउंट को सेटल नहीं किया तो वो एसएमए टू स्टेज पे जाता है। इसमें बैंक्स प्रयास करते हैं कि आपको सहायता प्रदान करके जो है उस वित्तीय संकट से में आपका मदद किया जाए। 90 दिन तक अगर आप अपना लोन में कोई अगर इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बाद ही वो एनपीए करार दिया जाता है।
1: और अगर कुछ थोड़ी सी उसमें इंस्टॉलमेंट में से कुछ अगर रकम चुका दे तो फिर भी थोड़ा सा उस पर ध्यान दिया जाता है।
0: देखिए, एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि भारत सरकार में वी बिलीव इन प्रूडेंशियल फाइनेंशियल नॉर्म्स। तो इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था में बैंकिंग जो है वो काफ़ी मजबूत रही है, और उसका एक रीज़न ये है कि हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन जो बैंक्स के ऊपर है
1: जी,
0: वो भी काफ़ी सख्त है। तो इनफैक्ट बैंक्स को भी इंश्योर करना होता है कि उनके अकाउंट्स जो है वो क्लीन चलें। तो ये 90 दिन का एक रिलीफ पीरियड है जिसके बीच में आप अपने अकाउंट्स को अगर मेंटेन कर पाते हैं तो उसमें आपको सहायता दी जाती
1: है। हरियाणा के करनाल से जुड़े हैं संजीव कुमार जी।
2: संजीव मैडम जी नमस्कार।
1: नमस्कार।
2: और जो एक्सपर्ट साहब हैं उनका भी नमस्कार।
0: नमस्कार।
2: हाँ जी सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे एमएसएमई होती है नहीं, और इनमें जो लोग काम करते हैं तो एक तो के ओवर टाइम काम ना करवाए, 8 घंटे से ज्यादा काम ना करवाए, इसके लिए क्या किया गया अभी तक? और मिनिमम वेजेस में कितने निर्धारित करी गई है जी? और वेलफेयर स्कीम के बारे में बताइए कुछ, के जो मजदूर काम करते हैं उनके और वेलफेयर स्कीम्स कैसे होती हैं?
0: देखिए, जो आपने प्रश्न किया है उसमें मैं बताना चाहता हूँ, जहाँ तक मिनिमम वेजेस का प्रश्न है तो मिनिमम वेजेस रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स डिक्लेयर करते हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स मिनिमम वेजेस को डिक्लेयर करती हैं वो उसमें एरियाज डिफाइंड रहते हैं, अर्बन एरियाज, रूरल एरियाज, किस नेचर का वो काम है, स्किल्ड वर्क है, अनस्किल्ड वर्क है, तो उस हिसाब से मिनिमम वेजेस स्टेट गवर्नमेंट्स नोटिफाई करती हैं, और हर साल ये टाइम टू टाइम रिवाइज भी होती हैं। तो किसी भी एंटरप्राइज में कोई अगर व्यक्ति काम कर रहा है तो आपके स्टेट में जो मिनिमम वेजेस डिक्लेयर्ड है आपकी कैटेगरी ऑफ वर्क के लिए, जिस श्रेणी में आपका स्किल लेवल आता है, तो उससे नीचे कोई भी एंटरप्रेन्योर आपको उससे कम वेजेस नहीं दे सकता। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बहुत वेलफेयर स्कीम्स हैं जिनको जिनकी अनुपालना करनी होती है, और इसके अंदर ECIS का कवर जो है वो डिपेंडिंग की एक एंटरप्राइज में 10 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो उस हिसाब से वो सारे कवर्स जो है वो भी प्राप्त रहते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिमम वेज नोटिफाइड है तो उसको ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं कि आपकी वेज जो है वो मिनिमम वेज पे।
1: और उन्होंने ओवर टाइम का पूछा, अगर ऐसा किया जा रहा है तो कहीं शिकायत दर्ज कराई जा सकती है, कोई हेल्पलाइन नंबर है जहाँ?
0: मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट जो है उनके लेबर इंस्पेक्टर्स हैं जो हर स्टेट के अंदर रहते हैं, वहाँ पर अगर ऐसी कोई कंप्लेंट है या दिक्कत है तो आप शिकायत अपनी दर्ज करा सकते हैं। इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कई बार हमने ये देखा मंत्रालय के पास, हमारे पास रिक्वेस्ट आई कि बहुत सी स्टेट्स जो हैं वो विमेन को नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती हैं। मैं इस प्रश्न को थोड़ा सा दूसरे रूप में आपसे साझा करना चाहूँगा अपने श्रोताओं के लिए कि बहुत कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो नाइट शिफ्ट अलाउ नहीं करती थी, और एक रिक्वेस्ट थी विमेन एसोसिएशन की तरफ से हमारे पास कि नाइट शिफ्ट अलाउ की जाए, तो हमने स्टेट गवर्नमेंट से टेकअप किया और उसके बाद काफी स्टेट्स ने अब नाइट शिफ्ट जो है उसको भी अलाउ किया है।
1: हाँ, अब एक और श्रोता लेते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, रमा शंकर वाजपेयी जी।
3: जी
1: नमस्कार, सवाल पूछे।
3: जो लघु उद्योग ये बड़े धंधों के साथ अटैच होते थे पहले, अब निरंतर बड़े उद्योग धंधे जो है मरणासन्न हो चुके हैं, अब इसके लिए छोटे उद्योगों को क्या जो है सरकार का नजरिया?
0: जो आपने प्रश्न पूछा है, मैं फिर एक बार ये दोहराना चाहूँगा कि जैसे मैंने बताया कि नंबर ऑफ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो

0: काफी संख्या इसकी बढ़ी है, 1,65,00,000 से अब 8,70,00,000 से ऊपर हुए हैं। और हमारे एमएसएमईज जो है वो लार्जर कॉरपोरेट्स का सप्लाई चेन का पार्ट है। हम ये मानते हैं कि जो सूक्ष्म उद्यम है वो आगे प्रोग्रेस करके लघु उद्योग या उद्यमी वो बने, और लघु जो है वो हमारे मीडियम एंटरप्राइजेस बने, और मीडियम एंटरप्राइजेस जो है वो ग्रेजुएट करें फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। तो ये एक कड़ी है, ये एक चेन है, और मंत्रालय की तरफ से हमारा ये प्रयास रहता है कि एमएसएमईज की ग्रोथ और उनके विकास के लिए हमारी 18 से ऊपर फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। अभी जो हमने मेंशन किया, अभी सिर्फ क्रेडिट और मार्केटिंग की बात हुई है, इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल हैंड होल्डिंग सपोर्ट, क्रिएशन ऑफ कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्रिएशन ऑफ क्लस्टर्स, क्लस्टर्स में हमारे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, और इस तरह की बहुत सी योजनाएं हैं। हमारा डिलेड पेमेंट्स के लिए एक इंस्टीट्यूशनल प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, ट्रेड्स, जो कि आरबीआई रेगुलेटेड है। तो वो ट्रेड्स के अंदर भी पिछले 4 सालों में 40,000 करोड़ से बढ़कर 3,00,000 करोड़ से ऊपर के बिल डिस्काउंटिंग जो है वो हुए हैं, जिससे लोगों को डिलेड पेमेंट के अंदर जो एक समस्या आ रही थी उसका समाधान अब हो रहा है। और इस तरह की बहुत सी हमारी योजनाएं हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि हमारे मंत्रालय की जो वेबसाइट है या जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है, अगर आपको कोई चीज है जिसके बारे में जानकारी आप चाहते हैं, तो 1-800-1806-763 के ऊपर आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और इसकी आपकी समस्या की जानकारी जो है उसमें हमारी कौन सी योजना आपके काम आ सकती है उसके बारे में आपको बताया जाएगा।
1: दिल्ली से जुड़े हमारे साथ कोको मस्ताना जी। कोको जी,
2: हेलो
1: जी, हाँ, अपना सवाल पूछे।
2: हाँ नमस्ते मैडम
1: जी।
2: हेलो
1: जी, हम सुन पा रहे हैं, जल्दी से सवाल।
2: एक्चुअली हमारा ना बुटीक है
1: जी
2: सिलाई का, तो उसमें हमारे पास 2 कारीगर है, क्या हमारे को उसमें लोन मिल सकता है?
0: बिल्कुल आपको लोन मिल सकता है, और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि एक PMEGP हमारी, वैसे तो आपका एक एस्टेब्लिश्ड यूनिट है जो ऑलरेडी चल रहा है, अगर कोई साथी हमारे नया कोई यूनिट लगाना चाहते हैं और नया उद्यम स्थापित करना चाहते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम एक हमारी स्कीम है, इसके अंदर हम कैपिटल सब्सिडी भी देते हैं, तो इसमें आपको बैंकों के माध्यम से लोन मिल सकता है, आप इस योजना का लाभ जरूर लें।
1: हमारे पास व्हाट्सएप पे भी एक सवाल आया है, उन्होंने पूछा है कि MSME को ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है क्या?
0: जी बिल्कुल, MSME को डेफिनेटली ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिलता है। जैसे मैंने बताया कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें 48% कंट्रीब्यूशन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की है, तो डेफिनेटली एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म हमारे MSMEs को मिलता है, और इसके अंदर मंत्रालय की तरफ से हमारी चेष्टा ये रहती है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को हम कैसे प्रमोट कर सके, किस तरह से और बेटर एक्सपोर्ट्स हम कर पाए बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी। तो कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ये 2 एक पहलू हैं जिसके ऊपर हम काम करते हैं।
1: आपने उद्यम पोर्टल का जिक्र किया डॉक्टर रजनीश, उस पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और उसके क्या फायदे हैं, रजिस्टर करवाना क्यों जरूरी है?
0: देखिए, उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर कराने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। जब आप उद्यम पोर्टल पे रजिस्टर करते हैं अपने आप को, तो आप MSME में औपचारिक रूप से शामिल हो जाते हैं, आपको एक पहचान मिलती है, आपकी एक एंटाइटलमेंट क्रिएट होती है। मैंने जैसे बताया कि 20 से ऊपर योजनाएं हैं, फ्लैगशिप प्रोग्राम जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो इन योजनाओं का आप लाभ तभी ले पाते हैं अगर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड हैं। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल 2020 में शुरू किया गया था, ये पोर्टल फुल्ली वॉलंटरी है, ऑनलाइन है, और ये पोर्टल हमारा, इसमें हमारी API बैकिंग है, जिसके अंदर हम GST, इनकम टैक्स और अलग अलग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो पोर्टल्स हैं उनसे जुड़े हुए हैं। तो इसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो बहुत सरल है, इसमें आपको अपना पैन नंबर और आधार नंबर, उसके बेसिस पे बेसिक जानकारी आप फिल करेंगे, बाकी डेटा हम ऑटो फेच करते हैं और उसके ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस पे, ऐसा नहीं है कि कोई इंस्पेक्टर आपकी यूनिट पे आएगा, वहां पर जाके पहले आपकी यूनिट को इंस्पेक्ट करेगा, उसके बाद कोई आपको रजिस्ट्रेशन जो है उसकी अप्रूवल होगी। ये सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस के ऊपर है, आप अपने आप जो है स्वतः ही इसके अंदर रजिस्टर हो सकता है।
1: जाते जाते बहुत जल्दी से विश्वकर्मा योजना, PM विश्वकर्मा योजना शुरू की गई थी, उससे क्या लाभ हुआ है?

0: जो पारंपरिक कारीगर हैं और शिल्पकार हैं।
1: देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये कि 30 लाख लोगों को 5 साल में हमें जोड़ना था। 2023 में ये योजना सितंबर में शुरू की थी, 2028 तक हमारे को 30 लाख लोगों को जोड़ना था। ढाई साल में ही 30 लाख लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 30 लाख में से 24 लाख लोगों को हम प्रशिक्षण दे चुके हैं। 17 लाख लोगों को 15,000 रुपए का टूल किट प्राप्त हो चुका है। 6 लाख लोगों को 5,000 करोड़ से ऊपर के ऋण मिल चुके हैं। तो ये एक ब्रॉड मैंने आपको जानकारी
0: तो बहुत बड़े स्तर पर योजनाओं का लाभ ले रहे हैं एमएसएमई। डॉक्टर रजनीश, आप आए हमसे चर्चा की, इसके लिए धन्यवाद। अपने श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। अगले सोमवार को फिर से मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति। नमस्कार,
1: धन्यवाद।

0: प्रसारित होते
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित दूसरे रक्षा अलंकरण समारोह में वीरता पुरस्कार प्रदान किए। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये पुरस्कार सशस्त्र बलों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसी के कर्मियों द्वारा असाधारण वीरता के कार्यों के लिए दिए जाते हैं।
2: राष्ट्रपति ने समारोह में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक, 30 परम विशिष्ट सेवा पदक, 12 उत्तम युद्ध सेवा पदक और 56 अति विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किए। अति विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वार्ष्णेय और वाइस एडमिरल आनंद वाई सरदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। परम विशिष्ट सेवा पदक पाने वालों में वाइस एडमिरल संजय वात्सयन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित शामिल हैं। उत्तम सेवा पदक से सम्मानित होने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये पदक सशस्त्र बलों के उन अधिकारियों और कर्मियों को देश के प्रति उनकी असाधारण और विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रदान किए गए हैं। सौम्या शरण के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सेशल्स की उनकी यात्रा काफी सार्थक रही और इससे भारत सेशल्स मित्रता सुदृढ़ होगी। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 50 वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध गहरे विश्वास और साझा प्रगति पर आधारित रहे हैं। उन्होंने सेशल्स की स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने पर भी प्रसन्नता व्यक्त की। प्रधानमंत्री सेशल्स की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौट आए हैं। राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना कोष में सरकार का कुल निवेश अब 60,000 करोड़ रुपए हो गया है। ये बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय महत्व के अन्य क्षेत्रों में केंद्र की निवेश प्रतिबद्धता को दर्शाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पिछले सप्ताह अवसंरचना निवेश को गति देने और देश में संस्थागत पूंजी को बढ़ावा देने के लिए कोष में 30,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश को मंजूरी दी थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में आज पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 और पश्चिम बंगाल जन व्यवस्था रखरखाव संशोधन विधेयक 2026 पारित हो गया। पश्चिम बंगाल जन सुरक्षा और असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण विधेयक 2026 के प्रावधानों के अंतर्गत जन सुरक्षा को खतरे में डालने और शांति व्यवस्था भंग करने वाली असामाजिक गतिविधियों के लिए किसी व्यक्ति को 12 महीनों तक हिरासत में रखा जा सकता है। हरियाणा और राजस्थान सरकार ने आज नई दिल्ली में यमुना जल परियोजना के निर्माण और कार्यान्वयन के समझौते पर हस्ताक्षर किए। गृहमंत्री अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि इस समझौते से हरियाणा और राजस्थान के लोगों की लगभग 3 दशकों से चली आ रही जल समस्या का समाधान हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 2 दिन के आंध्र प्रदेश के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति कल विजयनगरम में केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय के प्रथम दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। भारत ने अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हवाई हमलों की आज कड़ी निंदा की। इन हमलों में महिलाओं और बच्चे समेत कई आम नागरिक मारे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की ये खुली आक्रामकता अफगानिस्तान की संप्रभुता पर हमला और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। भारतीय सेना ने मीडिया की उन खबरों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया था कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हाल में अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की और वहां शिविर स्थापित किए। सेना ने कहा कि ऐसी खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमरीका और ईरान सैन्य हमले रोकने तथा हॉर्मुज जल डमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों का आवागमन फिर शुरू करने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों पक्षों के बीच कल कतर में वार्ता के नए दौर की घोषणा की है। इधर ईरान ने राष्ट्रपति ट्रंप के इस दावे को खारिज कर दिया है। उप विदेश मंत्री काजेम गरीबाबादी ने कहा कि कतर के साथ ईरान की बातचीत सामान्य रूप से जारी है। भारतीय